इंसान की एक बड़ी विशेषता है उसके विचार करने की क्षमता, जो दूसरे परजीवियों में नहीं पाई जाती है। जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपनी जाति और मानवता की सेवा करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीता है। विचार करने की जो अनोखी क्षमता मानव को मिली है, इसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। ऊंची सोच रखिए, आगे बढ़िए। यदि आप कुतुब मीनार के पहले माले से चारों ओर देखते हैं, तो आपको कूड़ा करकट यानी अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के माले से चारों ओर देखते हैं, तो सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती हैं। खराब चीजें आपकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने विचार और आचरण को हर रोज ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हमारा नजरिया उत्तम और व्यवहारिक बनता जाए और हम अच्छे जीवन के लिए उदार और सहनशील बन सके। अच्छा सोचेंगे तभी फल अच्छा होगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं और आज का तारीख है 26 मई 2026। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लूसी, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। और आप सभी को बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम को

पेश करने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक दी न्यू गैर अत तथा तकनीकी अभियंता दी न्यू। हमेशा की तरह आज भी हम इस सभा में पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। इसी के साथ श्रोताओं आइए हमारी आज की पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि अब से लेकर सुबह के दिन के 1 बजे तक होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में

श्रोताओं, ठीक 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को प्रसारित होगा कार्यक्रम भक्ति गीत, दोनों बोलो भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे बालिंग परमा अनपाटी की आवाज में आदि दोनों बोलो भक्ति गीत।

0: मिनट को, और ठीक उसी के बाद 8 बजे से लेकर 8:30 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आठ बजकर 40 मिनट को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और ठीक 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और ठीक 10 बजे आप फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दस बजकर 10 मिनट को प्रसारित होगा आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक उसी के बाद 11:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर। उसी के बाद 11:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। श्रोताओं ये था अब से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की शेष रूपरेखा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आदि दोन्यी पलो भक्ति गीत। श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
1: जी आकाशवाणी ईटानगर तनगा देमरोगाम लुचिर पोलो आलो चामनी गोला लोक नानग गाल आरो जगो गालो मेंकेन अगुमा मेंजी दुन मेंकेन अगुमा मेंलेन जिनेंगो जुम तोलोंब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मारो अरुणाचल प्रदेश लोक युवा नाम सोशल वर्कर नर्मु तेची गुबिन ने पार्स सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमोनी रिदाकलो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली बोलो पद्मश्री अवार्ड एम जितु PWD डिपार्टमेंट लोक चीफ आर्किटेक्चर ब रिटायर्ड कुन नर्म गुबिन मुयम ने गुमिन सोई नाम ने रगदूगला काम काजी रिनाम मुग दोनी पोलो धर्म एम कारा तारा नाम लगाब ओक इंडिजिनियस ट्रेडिशन एम लरी लो रलिक दुकुला कापा तपा मो नाम लगाब अमन एम पातु नाम अलाम मेंकें जितु नर्म गुबिन मुजिनी ग 113 निदुम सेलेक्टेड आतिर लोक पद्मश्री अवार्ड अमन एम पान आकेन गोबरतु सेरेमोनी रिदाक लोदुम आलोलो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत और एच डी कुमार स्वामी मुनु हालकतु चीफ मिनिस्टर पेमा कांडू मरो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गादग रिगनाम जूनियर इंजीनियर कम्बाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 लोक पान 404 निदुम इंजीनियर्स गादम अपॉइंटमेंट ऑर्डर एम मरो तोमलक तुकु सीएम कांडू मु जकन डायरेक ओक कापा तपा दोब ट्रांसपेरेंसी बरगना मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट जिगी स्टेट गवर्नमेंट गिंची बुमिन लगाब रिनम मेनम एम कातम दुन अला सीएम लोदुम अलोलोम मेन्तु नतुन ब पान इंजीनियर ओके मुनुगा नामरुम तुम एम आगाम आगम एम जिलेक दुला सीएम नौकरी पान गादे जिगी मुनुगा आजी नापुक दिंची ओके मेहनत ग दारा लोक ओक अनाबो नामरुम तुम गादेग आया मोरम लोक पादुन अला मेन्तु सीएम अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एम चिन एम ने डायरेक बरग दूला समय लोरी लेन गनाम लगाव चिन एपोप एम चिलेक्तु ओक अली व पान इंजीनियर्स गादम स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम अलन इंस्टीट्यूशन लो पोस्टिंग रिमा दब रिगर अला मेन्तु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैपिटल ईटानगर ए गुमिन सोयन कादम ने निदो कोदे होदागलो गिर ताले रिमा दोब इमरजेंसी सेफ्टी एम पृदी मधु अला मिंकें जितु केनलो जीत अलोलो डेप्यूटी कमिश्नर कैपिटल रीजन टोको बाबू एसपी ईटानगर जुम्मर बासर ओक कबू बीते बोते गद सिद्धार्था बिहार हॉल ईटानगर ग देदिर रचक रिकोलो हालक दुला कागो तागो एम ऋतु देदी रचक हृदय को एम कादुला सिद्धार्था बिहार हॉल ग नची ओक तुकोलो दुलुग ने गदम ने BNSS 2023 ओक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 ग आरालो 24 हावर आरालो कब अलने मोकोलो दुलुग नाम लगाव गवर्नमेंट ए परवाना एम जिलिकतु डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ए हारने समय लोक अलमा व गिर ताले हृदय को एम कादुला कागो तागो रिदुने अला मेंदुला पब्लिक एम ने अथॉरिटी कारा तारा ने गदिगा आगम एम तारु जीवका अला पब्लिक अपील गो जिलिकतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश ग अकेन राज्यसभा मेंबर ग ऑफिस ए हारने पोलो ग अलो चामनी गोला लोमना ने अलो लो रिपिन तनाम लगाव इलेक्शन एम रिगनाम लगाव मेंतु कमीशन इलेक्शन रिदागलो आयोग लीडर एम बोथ तुबदागलो रिटर्निंग ऑफिसर ग जिनाम वायलेट कलर स्केच पेन बेलोत पेपर लो बोथ एम तुबद मेन्तु ओके कमीशन इलेक्शन प्रोसेस एम प्री एंड पेयर रिनाम लगाव कारा तारा देन एम अपॉइंटमेंट तादुन अला मेंकेन जितु तनगत नुन मेंकेन आगमम आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादु अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन ईटानगर गाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन न्यू दिल्ली मिलाई दूला दोनी अलो नाव जन सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार एम हर न अलो चामनीगोला कोनाना ने अलोलो डेप्यूटी कमिश्नर कैंप ऑफिस आईजी पार्क ईटानगर लो रिगतादू नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन विजया राहतकर ईटानगर ओक जीरो लो दोनी लोपी कैंप लगाव हिरन अलोलो हालक तादू कमीशन हर न जन सुनवाई रिदाकलो अंजम ओक अवनिजिर कदम ने रतु दुबे लो हेंतु हेनरे अलमाब रिनांगो कारम ने प्रोग्राम लो हालिक दूला कॉम्प्लेन एम जिलिक नाम लगाब मेम पातु तवांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम का दम मरो बोमदिर नाला ब्रिज वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट लो आईएलपी चेकिंग ड्राइव अमृगतु ड्राइव रिदाक लो अगुम लो स्टेट लोक हालिक ने टूरिस्ट गदम आईएलपी डॉक्यूमेंट्स ओक नरकोटिस चेकिंग अमृतु चेकिंग रिदाक लो आईएलपी कामा व हा ने निदुम आउम गो गाक्तु ओक गाड़ी जोपी गो मोटर व्हीकल एक्स वायलेटर आरालो चलान एम लातू होम मिनिस्टर मामा नातुम सोशल मीडिया लोफ पुलिस गदग दिनची रूप ड्यूटी रे नाम लगाव कोई आगम एम जिलिकतू मित्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर ए लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एम ओरेज एलर्ट गो कातम तू हार न समय लो निदो को दे दोगुम दोरा के अचिरू बर दे दू एला मेंतू ओक अरुणाचल के पपुम परे ओक 16 डिस्ट्रिक्ट गो मोको मोको लोचे निदो को दे अचिव हो दे दू एला येलो एलर्ट गो कातम तू के तानगा दे जीरो गंगु नु गालो मेंकेन आगम एगे
0: श्रोताओं की आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार। गालो
1: श्रोताओं
0: का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों वक्त है आपको ले जाने का अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है सदाबहार और इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ जो है राजीव।

आज हम बात करेंगे प्री नेटल योगा और प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव बेहेवियर। प्रेगनेंसी दोस्तों एक बहुत ही खास अवस्था है, ये सिर्फ एक जिंदगी

माँ और बेबी दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ध्यान रहे, हम यहाँ हैवी जिम के वर्कआउट्स या इंटेंस एक्सरसाइजेस या कार्डियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल से स्ट्रेचिंग की, हल्का सा योग और गहरी सांस लेना और शरीर और मन दोनों को एक्टिव रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो प्रेगनेंसी के दौरान सेहतमंद रहने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1 टिप आपको बता दूं कि रोज हल्का मूवमेंट तो बहुत ही जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पर बैठे रहना या लेटे रहना हमारे शरीर को स्टिफ बना देता है। इससे पीठ में दर्द, स्वेलिंग और वीकनेस हो सकती है, इसलिए हल्का मूवमेंट बहुत ही जरूरी है। सुबह शाम थोड़ी देर वॉक करना, घर के अंदर हल्का चलना या डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रीनेटल योगा शरीर को एक्टिव रखेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और शरीर भी काफी फ्लेक्सिबल बना रहता है। सोचिए, अगर एक नदी का पानी बहता रहा तो वो साफ और ताजा रहता है, लेकिन अगर वही पानी एक जगह रुक जाए तो धीरे धीरे उसमें गंदगी जमने लगती है। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है, मूवमेंट उसका फ्लो बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छा सा रिसर्च कर ले या अपने डॉक्टर या प्री नेटल इंस्ट्रक्टर की जरूर सलाह ले, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो है वो है प्रीनेटल योगा। प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस कॉमन बात है। ऐसे में प्रीनेटल योगा और डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस मन को शांत रखने में मदद करते हैं। जब एक माँ रिलैक्स्ड और खुश होता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसके बच्चे पर भी पड़ता है। गहरी सांस लेना, उससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बेहतर होता है और माइंड को भी फ्रेशनेस मिलती है। आपने देखा ही होगा, जब हवा धीरे धीरे पत्तों को छूती है तो शांति का एहसास होता है। बिल्कुल वैसे ही योगा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मन को एक हल्का सा सुकून देता है। सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जैसे स्लो इनहेल और एक्सहेल भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इससे स्लीप भी बेटर होती है और हमारा दिमाग बहुत ही शांत रहता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा गीत का ब्रेक, जहां आप सुनेंगे ये गीत यस बॉस फिल्म से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत का नाम है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। इसी के साथ आइए हम सुनते हैं ये बेहतरीन गीत, फिर जारी रखेंगे हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं के केयर के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां हम बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं के और उसके केयर के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं टिप नंबर 3 के बारे में, जो है हैवी काम और इंटेंस वर्कआउट से बचें। दोस्तों ये तो जरूरी है कि एक्टिव रहना अच्छा है, लेकिन ओवर एक्सर्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप गर्भवती होते हैं तो भारी भरकम वेट उठाना या ज्यादा दौड़ना या बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेस करना रिस्की हो सकता है। हमारे शरीर को सपोर्ट चाहिए होता है, प्रेशर नहीं। इसीलिए स्मार्ट एक्टिविटी भी जरूरी है, हल्का सा स्ट्रेचिंग या डॉक्टर के अप्रूव किया हुआ योगा पोजेस और कंफर्टेबल वॉकिंग ही बेस्ट होते हैं। कई बार घर की लेडीज सारे काम खुद करने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। माँ बनने वाली महिलाओं को रेस्ट भी मिले और हेल्दी मूवमेंट भी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चौथे टिप के बारे में बात करते हैं, वो है सही पोस्चर और सिटिंग हैबिट्स के बारे में। पूरे दिन अगर आप बेड पर टेढ़े मेरे पोस्चर में बैठते हैं तो उससे तो क्या होगा कि बैक पेन और शरीर में डिस्कम्फर्ट तो बढ़ सकता है। इसीलिए सही पोस्चर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। चेयर पर सीधा बैठना, पीठ को सपोर्ट देना और हर थोड़ी देर में पोजीशन को चेंज करना शरीर को कंफर्टेबल रखता है। अगर पॉसिबल हो तो बहुत ही देर, घंटे तक एक ही जगह पर ना बैठे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, हल्का वॉक करें और शरीर को रिलैक्स रखें। और हाँ, हाइड्रेशन भी बहुत ही जरूरी है। पानी पीते रहना शरीर को एनर्जेटिक रखता है, स्वेलिंग कम करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं दूसरा गीतों का सफर में। आइए दोस्तों सुनते हैं ये गीत जिसका नाम है आज दिनचर्या, जो कि है लव आजकल फिल्म से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी। और हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं इतिहास के पन्ने से कुछ खास कहानियां, कुछ यादें और कुछ ऐसे पल जिन्होंने दुनिया की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, हर दिन सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं होती, हर दिन के पीछे छुपी होती है एक कहानी, कई संघर्ष, कई विजय और कई नए आरंभ। आज हम बात करेंगे 26 मई के बारे में। तो चलिए एक चाय की प्याली संभाले, सुबह की ठंडी हवा का मजा लीजिए और चलिए निकलते हैं इस सफर में। दोस्तों, 26 मई भारत की राजनीति और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इसी साल 2024 में श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली बार शपथ ली थी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि बहुत सालों के बाद किसी एक पार्टी को लोकसभा में इतनी मजबूती से मेजॉरिटी मिली थी। राष्ट्रपति भवन को का वो दृश्य देश भर के लोगों की उम्मीद और नए भारत के सपने, सब कुछ उस शाम एक नई चैप्टर की तरह शुरू हुआ था। और फिर दोस्तों, इसी तारीख में साल 2090 में नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ये भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पल था। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि देश की आवाज वोट के जरिए एक नई दिशा तय करती है। 26 में हमें ये याद दिलाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जहां हर आदमी का वोट एक बूंद की तरह है, लेकिन जब करोड़ बूंदे मिलते हैं तब लोकतंत्र का सागर बनता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला गीत है डू यू नो फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 2।

दोस्तों आइए जारी रखते हैं हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और अब हम बात करेंगे आज की तारीख यानी 26 मई के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास दोस्तों सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, ये देश विज्ञान, संस्कृति और साहस का भी कहानी है। आज के दिन हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को नए युग की तरफ बढ़ाया है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर, हमारे फौजी, हमारे डॉक्टर और हमारे फार्मर्स सब मिलकर भारत की कहानी लिखते हैं। हर नए दिन के साथ भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ और तेज कदम बढ़ा रहा है और आज जब हम डिजिटल इंडिया में स्पेस मिशन्स और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर बड़ा सपना एक ही छोटी सी कहानी से शुरू होता है। भारत से बाहर निकलकर दुनिया के इतिहास की तरफ चलते हैं। 26 मई को दुनिया में कई ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने ग्लोबल हिस्ट्री को प्रभावित किया। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम की। स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये युग में 26 मई का दिन कई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। 20th सेंचुरी में दुनिया स्पेस रेस के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक नए कंपटीशन को देख रही थी। इंसान का चांद तक पहुंचना सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट ही नहीं था बल्कि इमेजिनेशन और साहस का सिंबल था। सोचिए दोस्तों, एक वक्त जब लोग आसमान को देखकर सिर्फ सपने देखते थे, फिर धीरे धीरे वही सपने रॉकेट्स बन गए, सैटेलाइट्स बन गए और स्पेस स्टेशंस बन गए। ये हमें सिखाता है कि इमेजिनेशन कभी छोटी छोटी चीज से नहीं, हर इन्वेंशन पहले किसी के मन का एक सपना था। और आज के दिन 26 मई को जॉन वेन का जन्मदिन हुआ था। 26 मई को हॉलीवुड के लेजेंडरी जॉन वेन, उन्होंने वेस्टर्न फिल्म्स के थ्रू सिनेमा की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, आजकल सिनेमा समय का आईना होता है। हर फिल्म अपने दौर की सोच और इमोशंस और कल्चर को लेकर चलती है। जैसे भारत में राज कपूर, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने सिनेमा को नए रूप दिए, वैसे ही दुनिया भर में कई एक्टर्स ने लोगों की सोच और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। और दोस्तों साथ ही मई का महीना दुनिया को माउंट एवरेस्ट की याद भी दिलाता है। इसी पीरियड में दुनिया के कई माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशंस को कंप्लीट करते हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं, ये इंसानी हिम्मत का सिंबल है। बर्फ से ढकी हुई उन ऊंचाइयों तक पहुंचना हमें ये सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, हौसला और तैयारी इंसान को तो जरूर आगे ले जाता है। जिंदगी कुछ भी एवरेस्ट की तरह ही है। आप सोचिए, कभी हवा तेज होती है, कभी रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन जो रुकते नहीं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों आइए इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 MHz यानी 675 KHz पर।
1: अरुणाचल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
0: श्रोताओं, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग कार्यक्रम सदाबहार और मैं आज लेकर आई हूँ ताज़ा खबर वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, पॉजिटिव वाइब्स। और मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ लूसी। और अब वक्त हो चुका है आज के वेदर बुलेटिन का। आज हम बात करेंगे 26 मई के मौसम की, खासकर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के वेदर कंडीशंस के बारे में। तो अगर आप कहीं सफर पर निकल रहे हैं, स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं, या फिर घर के आंगन में चाय के साथ बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सेगमेंट खास आपके लिए है। सबसे पहले डालते हैं नजर राजधानी ईटानगर और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के मौसम पर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी काफी नजर आ रही है। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्यम बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म की संभावना भी बनी हुई है। IMD ने कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए हैं। आज ईटानगर पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहने वाला है। दिन भर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान लगभग 22 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी ज्यादा रहेगी, इसलिए मौसम थोड़ा आपको चिपचिपा महसूस हो सकता है। सुबह के समय हल्का सा फॉग और क्लाउडी स्काई देखने को मिल सकता है, जबकि दोपहर और शाम के समय थंडरस्टॉर्म की संभावना है। अगर आप दो व्हीलर से सफर कर रहे हैं, जैसे कि स्कूटी या बाइक या साइकिल, तो रेनकोट और अपना हेलमेट जरूर साथ रखिए। और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग करते वक्त आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता काफी स्लिपरी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की, जिसका सुंदर शहर पासीघाट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ईस्ट सियांग में आज जनरली क्लाउडी वेदर रहने वाला है और कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पासीघाट के आसपास ह्यूमिडिटी का लेवल काफी ज्यादा रह सकता है और बारिश होने की भी संभावना है। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 29 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और मिनिमम तापमान 21 से 22 तक। गांव और नदी किनारे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश से पानी भरने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, ईस्ट सियांग की बारिश को अपना एक अलग ही रंग होता है। हरियाली और बादलों के बीच जब हल्की हवा चलती है तो लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गा रही हो। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का पहला गीत, जो है गाइड फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, साथ ही लता मंगेशकर है। इस गीत का नाम है गाता रहे मेरा दिल।

दोस्तों चलिए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट तवांग की तरफ और आज का वेदर रिपोर्ट तवांग का। मौसम कंपैरेटिवली ठंडा रहने वाला है, यहाँ हल्की बारिश और क्लाउडी कंडीशंस की संभावना है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। तापमान यहाँ 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी जाती है। सेला पास और बुमला साइड में वेदर कभी भी अचानक से बदल सकती है, इसीलिए सफर से पहले सड़क और वेदर अपडेट्स जरूर चेक करें। वेस्ट सियांग और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में आज बारिश के अच्छे चांसेस है। कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है। IMD ने कुछ वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कॉशन एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि हैवी रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉकेज की संभावना हो सकती है। आलो और आसपास के इलाकों में सुबह ठंडी हवा और बादलों का सुंदर नजारा देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम तक बारिश तेज हो सकती है। अपर सियांग और दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा वेदर अनस्टेबल रह सकता है। हैवी क्लाउड्स और आइसोलेटेड रेनफॉल की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। पहाड़ी रोड पर ट्रैवल करने वाले लोगों को खासकर सतर्क रहना चाहिए। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना बेहतर होगा। नेचर यहाँ इतनी खूबसूरत है, उतनी ही पावरफुल भी है, इसलिए वेदर एडवाइजरीज को आप हल्के में ना लें। नमसाई और लोहित डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ईस्टर्न अरुणाचल के नमसाई और लोहित में मौसम कंपैरेटिवली गर्म रहने वाला है, लेकिन बारिश की संभावना बनी रहेगी। दिन में कभी धूप, कभी बादल और कभी हल्की बारिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। ये है टिपिकल प्री मॉनसून वेदर जो अरुणाचल प्रदेश को और भी ज्यादा फ्रेश और ग्रीन बना सकता है। दोस्तों आइए इसी के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है जिस गीत का नाम है जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, जो है करण अर्जुन फिल्म से।

आइए दोस्तों, अभी बात करते हैं तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग के वेदर रिपोर्ट के बारे में। साउथ ईस्ट अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट वो है तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग में बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना है। ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा रहने वाली है और कुछ जगहों पे लाइटनिंग भी हो सकती है, इसलिए खुले मैदान या बड़े पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचे। और अगर आप आउटडोर पे काम कर रहे हैं तो वेदर चेंजेस पर नजर बनाए रखिए। दोस्तों, मौसम जितना सुहाना होता है उतनी ही जिम्मेदारी भी लेकर आती है, तो कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स याद रखिए। सफर पर निकलते वक्त छाता या रेनकोट जरूर रखें। थंडरस्टॉर्म के समय खुले इलाकों से दूर रहें। पहाड़ी रोड्स पर संभल कर ड्राइव करें। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें। मोबाइल फोन हमेशा चार्ज में रखें, हो सके तो बैकअप पावर बैंक भी रखें और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हमेशा हैंडी रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रकृति का सम्मान करिए। बारिश सिर्फ पानी ही नहीं होता है, वो जमीन को जीवन भी देती है। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड वेदर बुलेटिन अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 26 मई को अरुणाचल प्रदेश में क्लाउडी वेदर है, बारिश और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहने वाली है। मौसम का अपना एक अलग ही अंदाज होता है, तो कभी धूप है, कभी बारिश और कभी बादलों की चादर। अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती तो हर मौसम में भी निखर जाती है। इसी खूबसूरत नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आप सुनते रहिए कार्यक्रम सदाबहार, जहाँ हर सुबह होती है ताजगी, जानकारी और पॉजिटिविटी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदा बहार, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
8: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
2: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के कॉप 30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की तीन दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
12: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
11: President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
11: Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. The Home Minister will visit the BSF's Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway have been rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. More in this report.
13: DGCA has made it compulsory for airlines to broadcast specific health announcements during flights to help identify possible Ebola cases early and prevent the spread of the disease. Passengers have been asked to immediately report symptoms such as fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat, vomiting, diarrhea or bleeding to the airline crew members as well as immigration or medical authorities upon arrival. The DGCA further stated that if symptoms develop within 21 days of arrival in India, travelers should seek medical assistance from designated hospitals and inform the airport health office. For suspected cases on board an aircraft, the SOP directs that the passenger should be relocated to the rear of the aircraft and, if possible, three rows in front and adjacent seats should be kept vacant. Airlines have also been instructed to maintain adequate stock of triple-layer masks, disposable gloves, PPE kits, hand sanitizers and biohazard disposal bags. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
11: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. In Punjab, polling has begun for municipal elections. Voting is taking place for 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 20 Nagar Panchayats. More from our correspondent.
14: These civic polls are being closely watched as a key political indicator ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. There is a multi-cornered contest as all major political parties, including the ruling Aam Aadmi Party, Indian National Congress, Shiromani Akali Dal and Bharatiya Janata Party, have fielded their candidates. According to the State Election Commission, 7,555 candidates are in the fray from a total of 1,896 wards across the state, where the voting is presently going on under a heavy police bandobast with a deployment of 32,000 police personnel. The model code of conduct is already in force across all civic bodies, as IAS and senior PCS officers have also been deputed as general observers to ensure a free and fair elections. To encourage voter participation, the Punjab government has declared a public holiday today for all, along with paid leave provision for eligible workers in industrial and commercial establishments. Counting of votes will take place on Friday, May 29th. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
11: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttarakhand and West Madhya Pradesh. Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. According to the weather agency, parts of Northeast India, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Mahe are likely to witness heavy rainfall today. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost every district has crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda recorded one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. Meanwhile, southwest monsoon is expected to reach Keralam today. The arrival of the monsoon is very critical to the Indian agricultural economy and daily life. More from our correspondent.
15: The southwest monsoon, which usually reaches Keralam on June 1st, may advance and is expected to arrive in Keralam today. The meteorological department has declared an yellow alert, indicating isolated heavy rain in 4 of the 14 districts in Keralam today. The onset of the monsoon will be officially declared if 2.5 mm of rainfall is recorded for 2 consecutive days in 60% of the 14 designated weather stations in Keralam and Lakshadweep. Wind and inset data will also be considered for the same. In the meantime, about 5 mm of rain was recorded in the southern districts of Keralam by 7 a.m. today. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
11: The U.S. military carried out self-defense strikes targeting Iranian missile launch sites and boats near the Strait of Hormuz amid an ongoing ceasefire between the two countries. CENTCOM spokesperson Timothy Hawkins said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats attempting to deploy mines, adding that U.S. forces were acting with restraint while defending the troops during the ceasefire. Iranian President Masoud Pezeshkian has ordered the restoration of internet access across the country. Iranian authorities had imposed a near-total internet blackout across the country for more than 87 days. The restrictions reportedly hampered civilians' access to information during the U.S.-Iran conflict, while also severely affecting businesses dependent on internet connectivity. On to sports. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. Avika Singh starred for the hosts with 4 goals, while Priyanka Nauram and Karishma scored a brace each. India will now face Bangladesh in their next match on Sunday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will advance directly to the IPL 2026 final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. India's top shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu will spearhead the country's challenge at the Singapore Open Super 750 tournament, kicking off today. Other Indian players including Ayush Shetty, Kidambi Srikanth and H.S. Pranoy are also set to feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansor will be up against Chinese Taipei's Lin Xiang Ti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
16: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing up by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left U.S. in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
17: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
18: This is Akashvani Shillong, the Northeast News Bulletin, read by Sandeepan Chakravarti. The headlines. 27 fisheries project worth 32.15 crore rupees launched across northeastern states. President Murmu to visit Nathula Pass during the three-day Sikkim visit from today. Haridwar of Meghalaya receives Padma Shri for preserving Meghalaya's living route bridges at the civil investiture ceremony one held at Rashtrapati Bhavan. The news in details. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh, inaugurated and laid the foundation stone for 27 fisheries projects worth 32.15 crore rupees across seven northeastern states during the Northeastern States Regional Review meeting held in Mizoram's Aizawl yesterday. The projects implemented under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund are aimed at strengthening fisheries infrastructure, promoting aquaculture development, enhancing value addition and generating livelihood opportunities. Rajiv Ranjan Singh emphasized the centre's commitment towards strengthening infrastructure, enhancing productivity, promoting technology adoption and accelerating implementation of development projects across the region for livelihood generation, nutritional security and sustainable growth. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass on India-China border during her three-day Sikkim visit beginning today. Murmu will visit Namgyal Institute of Technology of Tibetology at Gangtok today. The President's office yesterday said on the 27th of this month, the President will visit Nathula Pass. On the same day, she will also grace the convocation ceremony of Sikkim University at Gangtok, it said. On the last day, the President will present the President of India's police colour to the Sikkim police in an event to be held at Paljor Stadium in Gangtok. Meghalaya environmentalist and indigenous knowledge keeper Haridwar was

दोस्तों, जब भी अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने उभर आते हैं ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरी वादियां, गहरे जंगल, रंग बिरंगी फूल और प्रकृति की एक जीवित तस्वीर। लेकिन अरुणाचल प्रदेश सिर्फ सुंदरता का ही घर नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी का भी एक खजाना है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के एंडेमिक स्पीशीज, यहाँ की फ्लोरा फौना के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक प्रकृति सफर के लिए, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट और नेचर लवर्स के लिए ये एक लिविंग म्यूजियम की तरह है। यहाँ हिमालयस की पहाड़ियाँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अल्पाइन मेडोज, नदियों के आसपास के इकोसिस्टम मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जहाँ हजारों प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है जहाँ बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा रिच मानी जाती है। कई ऐसे स्पीशीज यहाँ मिलते हैं जो दुनिया के कहीं और कोने पे नहीं मिलते, इसी वजह से इसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, सुबह का वक्त हो, पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई हो, जंगल से पक्षी की आवाज आ रही हो और हवा में बैम्बू और मिट्टी की खुशबू हो, अरुणाचल प्रदेश का प्रकृति से फरिश्ता कुछ ऐसा ही है। यहाँ हजारों वेराइटीज के ऑर्किड मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है। पर्पल, पिंक, येलो, व्हाइट, हर तरह के रंगों के ऑर्किड्स जंगल को किसी पेंटिंग की तरह सजा देते हैं। इसके अलावा यहाँ बैम्बू, रोडोडेंड्रॉन, मेडिसिनल पौधे और रेयर मेडिसिनल प्लांट भी कई मात्रा में पाए जाते हैं। कई ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल की इन्हीं जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल करके ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ नेचर सिर्फ सीनरी ही नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। और दोस्तों, जब बसंत का मौसम आता है तो पहाड़ियां फूलों से भर जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने रंगों को शॉल ओढ़ लिया हो। और अगर बात करें यहाँ के फौना के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश का डेंस फॉरेस्ट में कई रेयर और एंडेंजर्ड जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे मिलते हैं स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर और हुलॉक गिबॉन्स जैसे प्राणी। बर्ड लवर्स के लिए ये राज्य किसी पैराडाइज से कम नहीं है। ग्रेट हॉर्नबिल, मोनल और कई कलरफुल बर्ड्स यहाँ के जंगलों को आवाज और रंगों से भर देते हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है द ग्रेट हॉर्नबिल। इसकी बड़ी सुंदर चोच और मजेस्टिक अपीयरेंस इसे जंगल का एक रॉयल मैसेंजर बना देता है। जंगल यहाँ सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं, ये कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा है जहाँ हर पक्षी और हर जानवर हवा की आवाज से एक मेलोडी की तरह महसूस होती है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं ये पहला गीत कार्यक्रम हेलो ईटानगर का, जो है आरक्षण फिल्म से। गीत का नाम है अच्छा लगता है।

दोस्तों आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर पर। और अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के सबसे खास मेहमान जो है मिथुन। मिथुन का साइंटिफिक नाम है बॉस फ्रंटलिस और ये एक मेजेस्टिक बोवाइन एनिमल है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पाए जाते हैं। लेकिन अरुणाचल में मिथुन की एक अलग ही पहचान है। ये सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि कल्चर, ट्रेडिशन और रिस्पेक्ट का सिंबल है। मिथुन का शरीर बहुत ही मजबूत होता है, सींग बड़े और पर्सनालिटी भी बहुत रॉयल होती है। जब ये पहाड़ी जंगलों में आराम से चलता है तो लगता है जैसे जंगल का कोई शांत राजा अपनी सीमाओं का निरीक्षण कर रहा हो। अरुणाचल प्रदेश की कई ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए मिथुन बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। फेस्टिवल्स हो या शादी हो या ट्रेडिशनल पूजा, उन सभी में मिथुन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कई कम्युनिटीज के लिए मिथुन तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और सोशल स्टेटस का भी सिंबल है। पुराने समय में किसी व्यक्ति के पास कितने मिथुन है उससे उसकी समृद्धि का अंदाजा लगाया जाता था। मिथुन और इंसान का रिश्ता यहाँ सिर्फ ओनरशिप का नहीं है, ये रिस्पेक्ट और एग्जिस्टेंस का रिश्ता है। मिथुन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक नेचुरल हिस्सा है। इसका ग्रेजिंग पैटर्न जंगल के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है और ये काफी डिफिकल्ट टेरेन और ऊंची पहाड़ियों में आसानी से सरवाइव कर लेता है और शायद इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ का भी एक सिंबल बन गया है। दोस्तों आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन से खतरा है। अरुणाचल प्रदेश की फ्लोरा और फौना को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं बल्कि ये हम सब की हमारी जिम्मेदारी है। अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तो मिथुन भी सुरक्षित रहेंगे, पक्षी भी गाते रहेंगे और पहाड़ों में वो खामोश सुंदरता भी बनी रहेगी। इको फ्रेंडली टूरिज्म, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। नेचर हमसे कुछ मांगती नहीं, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहती है। तो दोस्तों आज हमने जाना अरुणाचल प्रदेश की बायोडायवर्सिटी के बारे में, उसकी फ्लोरा और फौना की खूबसूरती के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के मेजेस्टिक एनिमल मिथुन यानी बॉस फ्रंटलिस के बारे में। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सिर्फ देखी ही नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। यहाँ के जंगल कहानियां सुनाते हैं, नदियां गीत गाते हैं और पहाड़ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आइए मैं आपको ले जाती हूँ हमारे इस कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। आप सुनते रहिए हेलो ईटानगर, जहाँ हर एपिसोड होता है अरुणाचल की मिट्टी की खुशबू और उसकी संस्कृति का एक प्यारा सफर। अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से प्यार कीजिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग में गोंडाला रेल रोपवे में केबल कार में फंसे करीब 300 पर्यटकों के सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में

0: सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने संबंध में जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइली सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में भी आज लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्रों, गोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. The Sikkim government has made elaborate arrangements to welcome her. In the evening, the president will visit the Namgyal Institute of Tibetology in Gangtok. A report.
2: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
1: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. The millions of people from across the world, including India, will perform Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of 5-day Hajj rituals. Pilgrims converged at 10th city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to plains of Arafat today for the main ritual of Hajj reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in evening. The pilgrims will return to Mina tomorrow morning for ritual of animal sacrifice and symbolic stoning of devil. U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchanged views on the Russian-Ukraine war and the situation in Iran, said the U.S. Department of State spokesperson Tommy Pigott. Mr. Pigott said the parties exchanged views on Russia-Ukraine war, bilateral relations and the situations in Iran. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Russia's decision to launch strikes on sites in Kyiv is linked to the continuing attacks by Kyiv regime against the peaceful population and civilian sites on Russian territory. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost every district has crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda recorded one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. The scorching heat has compelled people to remain indoors, and the state witnessed highest demand of electricity yesterday. Uttar Pradesh met a peak demand of 31,824 megawatts, which was not only the highest electricity supply ever recorded in state, but also the highest by any state in the country so far. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. today. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की। अगला कार्यक्रम है फिल्मी गपशप।
4: ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड that illegal earth-cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar capital region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
5: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत करती हूँ हमारे आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट अड्डा पे जिसका नाम है फिल्मी गपशप। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ जो है गोरी तेरे प्यार में फिल्म से, और इसे गाया है सनम पुरी ने, और इस गीत का नाम है धत तेरी की मैं। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस जोशीले गीत के साथ।

स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट कार्यक्रम एंटरटेनमेंट गॉसिप फिल्मी गपशप में, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की ताजा खबरें, ओटीटी दुनिया के नए धमाके, सेलिब्रिटी गॉसिप और फिल्मी दुनिया की हर वो बात जो आपको एंटरटेन करे फुल ऑन स्टाइल में। मैं हूं आपकी रेडियो साथ ही आरजे लूसी, और आज के एपिसोड में होने वाला है एंटरटेनमेंट का फुल पैसा वसूल तड़का। तो चाय हो या कॉफी हो, या अगर आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं तो तैयार हो जाइए बॉलीवुड के चमकते सितारों और ओटीटी के नई यूनिवर्स की जबरदस्त राइड के लिए। बॉलीवुड की दुनिया में दोस्तों इस वक्त काफी एक्साइटिंग मूवीज लाइनअप में हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। उसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। इस फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर

और पूजा हेगड़े। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन, जो कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए काफी मशहूर है। बॉलीवुड सर्कस में ये कहा जा रहा है कि फिल्म फुल ऑन कॉमेडी, रोमांस और कंफ्यूजन का पैकेज होने वाला है। मतलब एक क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनर। और दोस्तों, इसका म्यूजिक भी काफी बस क्रिएट कर रहा है। फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म के गाने शायद शादी के सीजन में हर डीजे के प्लेलिस्ट का पार्ट बन जाए। अब बात करते हैं अगली फिल्म के बारे, जो एक इमोशनल और इंटेंस फिल्म है, मैं वापस आऊंगा। इस फिल्म में है दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रायना और नसीरुद्दीन शाह। फिल्म शायद ये पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बेस्ड है और इनसाइडर्स कह रहे हैं कि इसका स्टोरी टेलिंग काफी पावरफुल है। सोशल मीडिया पर लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये फिल्म अवार्ड सीजन में जरूर बड़ा नाम कमाएगा। हिस्टोरिकल सिनेमा लवर्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का बस काफी स्ट्रांग चल रहा है। फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को ग्रैंड स्केल पर दिखाएगी और टीजर देखकर ही फैंस का एक्साइटमेंट काफी हाई हो गया है। बैटल सीन्स, कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग्स की काफी तारीफ हो रही है। बॉलीवुड का हिस्टोरिकल एरा फिर से कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत पेश है लव आजकल फिल्म से।

दोस्तों, आइए, आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम फिल्मी गपशप पे। और अब चलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का धमाका की तरफ, जहां हर वीकेंड एक नई दुनिया खुल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स पर इस वक्त थ्रिलर और रियलिटी बेस्ड कंटेंट काफी ट्रेंड कर रहे हैं। देसी ब्लिंग नाम की एक रियलिटी सीरीज ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर रही है, जहां लग्जरी लाइफस्टाइल और ग्लैमर का फुल ऑन तड़का देखने को मिल रहा है। साथ ही क्राइम लवर्स के लिए कर्तव्य भी काफी पॉपुलर हो रही है। फिल्म में सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा दोनों का जबरदस्त मिक्स है। दोस्तों, ओटीटी का जमाना ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ एक एपिसोड बोलकर पूरी रात जाग जाते हैं। और अब बात करते हैं प्राइम वीडियो की। प्राइम वीडियो पर एक्शन सस्पेंस वाली सीरीज काफी ट्रेंड हो रही है। डकेट और लुक के जैसे टाइटल्स ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं। स्पेशली डकेट को लेकर ऑडियंस में काफी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि इसका स्टाइल और सिनेमाटोग्राफी काफी अलग बताया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, अब रीजनल सिनेमा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फुल पावर के साथ शाइन कर रहे हैं। मलयालम हो या तेलुगु या पंजाबी कंटेंट नेशन वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट के, जो है गॉसिप कॉर्नर। दोस्तों, इंडस्ट्री कॉर्नर्स में ये बस चल रहा है कि बड़े स्टार्स अपकमिंग मूवीज में सरप्राइज कैमियोज करने वाले हैं। फैंस टीजर्स और ट्रेलर्स को जूम करके क्लूज ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई डिटेक्टिव अपने मिशन पर हो। और हाँ, सेलिब्रिटी एयरपोर्ट लुक्स पर फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स के एयरपोर्ट आउटफिट्स अब फैशन इवेंट से कम नहीं लगते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पॉपुलर बॉलीवुड कपल है जो इस साल एक रोमांटिक फिल्म में साथ नजर आएंगे। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन फैन क्लब्स ऑलरेडी एक्साइटमेंट में है। फिल्म इंडस्ट्री में भी रेट्रो सॉन्ग्स की रिमिक्स और रिक्रिएशन का ट्रेंड तो वापस आ रहा है, और 90s के गाने फिर से नई बीट्स के साथ कमबैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं इस गीतों का सफर जारी रखते हैं हमारे अगले गाने के साथ, जो है एक मैं और एक तू का टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, आजकल बॉलीवुड और सोशल मीडिया एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। किसी फिल्म का टीजर हो, अगर वो रिलीज होते ही मीम्स और रील्स और फैन एडिट्स का फ्लड आ जाता है। फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के डांस स्टेप को रिक्रिएट करते हैं, डायलॉग्स पर रील्स बनाते हैं और कभी कभी तो एक छोटा सा सीन भी वायरल ट्रेंड बन जाता है। और दोस्तों, स्टार्स भी अब फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहने लगे हैं।

लाइव सेशंस, बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग डायरीज ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है. कभी कभी तो बैक स्टेज वीडियोज मूवी से भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं. चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक क्विक वीकेंड वॉच लिस्ट भी हो जाए. है जवानी तो इश्क होना है, राजा शिवाजी, मैं वापस आऊंगा, ये तीन फिल्में आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. और ओटीटी की खास पिक्स है कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर, सिस्टम प्राइम वीडियो पर डकैत एक्शन लवर्स के लिए, देसी ब्लिंक फॉर रियलिटी ड्रामा फैंस. तो दोस्तों, इस वीकेंड एंटरटेनमेंट की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है. और इसी के साथ आज का ये फिल्मी गपशप यही पर समाप्त होता है. याद रखिए दोस्तों, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये इमोशंस का एक सफर भी होता है. कभी हंसी हो, कभी आंसू हो, कभी रोमांस और कभी एक्शन, बॉलीवुड हर दिल की कहानी सुनाता है. दोस्तों, बॉलीवुड गॉसिप तो यहीं पर खत्म हुआ, लेकिन फिल्मी गीतों का सिलसिला अभी भी जारी है.

जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू

0: border region in Bikaner. Millions of people from across the world, including India, will perform Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of five-day Hajj rituals. Pilgrims converged at the tent city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to plains of Arafat today for the main ritual of Hajj reciting prayers. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh, Gangetic, West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifying one in Dharamshala today. And that is the end of...
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अगला कार्यक्रम पेश है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
3: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां सुरों का सफर चलता है सीधा आपके दिल से और पहुंचता है हमारे स्टूडियो तक। ये वो कार्यक्रम है जहां आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें, अपने मैसेजेस और अपने जज्बात, और हम उन्हें यहां हवाओं के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले दिल से एक बड़ा सा थैंक यू मेरे प्यारे श्रोताओं को, जो रोज सुनते हैं, मैसेज भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और इस कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं। सच कहूं दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ एक रेडियो शो नहीं है, ये एक परिवार है और इस परिवार की धड़कन है आप सभी श्रोता। आपके बिना ये शो बिल्कुल उस गिटार की तरह होता है जिसमें तार ही नहीं हो। आपकी रिक्वेस्ट ही इस कार्यक्रम को रोशनी देता है और आपका प्यार ही इसका म्यूजिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का म्यूजिकल सफर एक खूबसूरत रोमांटिक गाने के साथ। पहला गाना है, यानी पहली फरमाइश है जान मेरी जा रही सनम फिल्म से। गीत का नाम है जान मेरी जा रही सनम, फिल्म है लकी नो टाइम फॉर लव। इस गाने को अपनी मधुर आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने, और इस फिल्म में अपनी ब्यूटीफुल लोकेशंस, काफी इमोशनल स्टोरी लाइन और सोलफुल म्यूजिक के लिए काफी पसंद किया गया है इस फिल्म को। इसमें रोमांस है और इमोशंस बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंड में देखने को मिलते हैं, और इस गाने की मेलोडी तो क्या कहे दोस्तों, जैसे ठंडी हवा किसी शाम से धीरे धीरे छू जाए। और इस गीत की फरमाइश हमें आई है टेंशन क्रो सार्लो ए ग्रोह से, नीली ग्रुपी सरजांग और सरजांग ग्रुपी जो कि लंगकांगसाम कार्बी आंगलोंग श्रोताओं के रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये फिल्म का गीत बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत ही अच्छी सॉन्ग रिक्वेस्ट है आपकी। तो आइए आपकी फरमाइश पर ये गीत कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पे टेंशन क्रो सार्लो ग्रोह नीली ग्रुपी सरजांग ग्रुपी के लिए।

दोस्तों, अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। म्यूजिक का ये सफर थोड़ा रेट्रो अंदाज में जाने वाला है, क्योंकि अगला गाना उन गीतों में से है जो वक्त के साथ और भी हसीन लगने लगती है। अगला गीत है दिल को देखो चेहरा ना देखो, ये है फिल्म सच्चा झूठा से। इस अमर गीत को अपनी यादगार आवाज दी है लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार ने। फिल्म सच्चा झूठा में सुपरस्टार राजेश खन्ना का डबल रोल था और फिल्म उस दौर की सबसे एंटरटेनिंग और पॉपुलर मूवीज में से एक थी। रोमांस हो, कॉमेडी, ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इस फिल्म का ये गीत सबसे खास एक मैसेज देता है। दिल को देखो चेहरा ना देखो, मतलब असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, चेहरे पे नहीं। कितनी सिंपल और कितनी गहरी बात है। तो किशोर कुमार की आवाज में तो एक अलग ही जादू है। उनके गाने तो सिर्फ सुने ही नहीं जाते, आप दिल से उन्हें महसूस करते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें आई है ये रोमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लकी से, जो कि गोलाघाट असम के रहने वाले हैं। तो रोमेश जी, रुनु जी और लकी जी, आपकी फरमाइश पर अब रेडियो ऑन डिमांड होने वाला है थोड़ा सा रेट्रो।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों। रेडियो ऑन डिमांड का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो होता है जब जो इमोशंस जो आप अपनी फरमाइशों के साथ भेजते हैं, कभी दोस्ती का प्यार, कभी यादों की मिठास और कभी परिवार के लिए दिल से निकली हुई दुआएं। और एक बहुत ही प्यारी डेडिकेशन आई है कुछ बच्चों की तरफ से अपने मम्मी और पापा के लिए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के खास मौके पर। मैसेज लिखा है, हैप्पी एनिवर्सरी टू मम्मी एंड पापा, यू बोथ आर आवर स्ट्रॉन्ग पिलर्स, ऑलवेज गाइड एंड ब्लेस अस। कितना खूबसूरत मैसेज है दोस्तों। माँ बाप वाकई में जिंदगी के वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं जो हर मुश्किल में हमें संभालते हैं, हमें हौसला देते हैं और बिना किसी शर्त के हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इस खास मौके पर हमारी तरफ से मम्मी एंड पापा को वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयां। आप दोनों की जिंदगी हमेशा खुशियों, सेहत और प्यार से भरे रहे, आपका साथ यूं ही बना रहे और आपके घर में हमेशा हंसी और दुआओं की रोशनी चमकते रहे। और दिल से थैंक यू उन प्यारे श्रोताओं को जिन्होंने इतनी स्वीट डेडिकेशन भेजी। सच में दोस्तों, ऐसे मैसेजेस रेडियो ऑन डिमांड का से ये एक सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि दिल को जोड़ने वाला एक एहसास बना देता है। और इस फरमाइश को भेजी है सुप्रिया, समीर, आनंद और इशाया एंड रूपा ने। तो वक्त आ गया है दोस्तों अपनी मॉम एंड डैड के वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट हुआ है, तो लीजिए, पेश है

दोस्तों, म्यूजिक की दुनिया भी कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना। कभी कभी हम सालों तक किसी गाने को सुनते रहते हैं और हमें लगता है कि वही ओरिजिनल वर्जन है, लेकिन फिर एक दिन रेडियो पर अचानक उस गीत का असली रूप सुनाई देता है और लगता है जैसे पुरानी यादों का कोई दरवाजा खुल गया हो। और अब रेडियो ऑन डिमांड में आई है एक ऐसी फरमाइश जिसके लिए हम अपने श्रोताओं को दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। सच कहें दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने अर्ली 2000 का फेमस रिमिक्स काटा लगा गाना, जो ये सुना होगा, कई लोगों को लगा होगा कि वही ओरिजिनल गाना है, लेकिन हमारे श्रोताओं ने हमें याद दिलाया कि उस गीत का ओरिजिनल और एवरग्रीन क्लासिक वर्जन भी है। तो वो गीत का नाम है बंगले के पीछे फिल्म समाधि से, और इस ओरिजिनल वर्जन को अपनी लेजेंडरी आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। फिल्म समाधि अपने जमाने की एक पॉपुलर फिल्म थी जिसमें एक्शन, ड्रामा और म्यूजिक का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। लेकिन इस गाने ने अलग ही पहचान बना ली थी। इसकी रिदम, लिरिक्स और लता जी की आवाज में एक ऐसा टाइमलेस चार्म है जो आज भी श्रोताओं को ग्रूव करने पर मजबूर कर देती है। और इस गीत की फरमाइश आई है जोगेंद्र रोंगपी, धर्मगिरी रोंगपी, सोनाली इंगतिपी से, जो उन्होंने इस गीत को अपने दोस्तों को डेडिकेट किया है। तो जोगेंद्र जी, धर्मगिरी जी और सोनाली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में हमसे जुड़े रहने के लिए। तो आपकी फरमाइश पर आपका मनपसंद गाना पेश है।

0: The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का म्यूजिकल सफर अब और भी हसीन होने वाला है, क्योंकि अब बारी है 90s के उन गीतों की जो आज भी दिलों में उतनी ही ताजगी के साथ बसते हैं। 90s का बॉलीवुड म्यूजिक एक अलग ही जादू रखता है, और उस दौर के गाने सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं थे बल्कि इमोशंस का हिस्सा बन जाते थे। शादियों में, लॉन्ग ड्राइव्स में, रेडियो रिक्वेस्ट में, और कभी कभी तन्हा रातों में भी ये गीत हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये गाना जो हम लेकर आए हैं वो है फिल्म परदेश से मेरी महबूबा। इस खूबसूरत रोमांटिक गीत को अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। कुमार सानू की सोलफुल आवाज और अलका याग्निक की मेलेडी ने इस गाने को एवरग्रीन बना दिया। और

दोस्तों, जब जब भी ये गाना बजता है तो लगता है जैसे कि 90s की बारिश, पुराने कैसेट प्लेयर्स और दिल के कुछ हसीन लम्हे फिर से लौट आए हो। और दोस्तों, इस गीत की फरमाइश आई है हमें बिकी साइकिया से, जो कि जोरहाट असम के रहने वाले हैं। तो बिकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। इतनी दूर जोरहाट से आप हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर अपनी फरमाइश आपने भेजी है, तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गीत आपकी फरमाइश पर पेश है।

नमस्कार। ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें और किसी भी इमरजेंसी

0: नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।
2: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में अगली फरमाइश आएगा आई है आएगा मजा बरसात गीत का।

दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड की यहीं पर समाप्ति होती है। आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। आपकी फरमाइश और प्यार ही इसी प्रोग्राम की असली ताकत है। अगर आप भी अपने फेवरेट गाने और स्पेशल फरमाइश भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए 9436887808।

मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, और जान इसी के साथ हमारी पहली ट्रांसमिशन यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा के लिए आरजे नानाश स्टूडियो पर पहुंच चुकी है, और इस पहली सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद प्रसारण निष्पादक गैर अदत तथा तकनीकी अभियंता पीवी न्यू। मैं हूं आपकी आरजे लूसी, और इसी के साथ अलविदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्ध और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इस बीच मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio were attending the meeting. Addressing a joint press meet after the Quad Foreign Ministers meeting, Dr. Jaishankar emphasized to further strengthen cooperation among the Quad nations while also assisting others.
2: Economic resilience should be promoted, that supply chain should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. We, the Quad nations, are open societies who foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. These forces are strengthened when we undertake more exchanges, as we intend to do.
1: He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Defence Minister Rajnath Singh today hailed the completion of 12 years of the Narendra Modi government, describing it as a transformative phase in India's civilizational and developmental journey. In a social media post, he said 26th of May 2014 marked a decisive shift in the country's governance, vision, leadership and national resolve as Mr. Modi took oath as the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that the successful rescue of 300 tourists stranded in cable cars in Gulmarg by a joint rescue team comprising the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, NDRF, STRF and Civil Administration reflects the swiftness, professionalism, courage and coordination of India's disaster response agencies. Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. Home Minister will visit the BSF's Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. Indian equity markets traded flat in the morning trade today after fresh U.S. strikes in southern Iran, targeting boats attempting to lay mines and missile launch sites. Sensex gained 80 points to 76,575, while Nifty slipped 45 points to 23,986 when reports last came in. Among sectoral indices, IT, chemicals, media, PSU banks and metal stocks traded in positive territory. The IMD has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbh and West Rajasthan. According to the weather agency, parts of Northeast India, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Mahe are likely to witness heavy rainfall today. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Millions of people from across the world, including India, will perform Hajj in Saudi Arabia today. Marking the beginning of 5-day Hajj rituals, pilgrims converged at the tent city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to the plains of Arafat. And that is the end of this news bulletin.
3: तो दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। यह है आकाशवाणी का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों अब हमारे स्टूडियो में बज चुके हैं 11:11 यानी अब शुरू होगा हमारा दूसरा प्रसारण सवा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले आप सुन रही थी हमारी चहीते आरजे और आप सबका मनपसंदीदा आरजे लूसी को जो बनी हुई थी आप सबके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में। और दोस्तों अब लूसी ने सौंप दिया है इस स्टूडियो का कमान मेरे हाथ में, यानी अब से कुछ पलों के लिए आपके साथ बना रहेगा आपका अपना दोस्त आरजे ननास। और दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगझांग तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा ये सभा द 100 फिल्मी लहर के साथ।

0: Yeah, kid, you're pretty good, man.
1: तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीत के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पे, क्योंकि यहाँ होता है दिल से दिल की बात।
2: अरुणाचल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम फिल्मी लहर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म हैप्पी एंडिंग। गीत है जैसे मेरा तू, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: कुछ पलों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
3: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world, and these four nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, and disaster relief activities, among others. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Quad countries made further progress on operationalizing their relationship on the areas that they can cooperate.
4: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also it's not only becoming a forum by which you begin to take action.
2: Directorate General of Civil Aviation DGCA has issued a standard operating procedure SOP for airlines after the WHO declared the Ebola disease outbreak as public health emergency of international concern in the Democratic Republic of Congo and Uganda. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. Defense Minister Rajnath Singh has said the successful rescue of 300 tourists stranded in cable cars in Gulmarg by a joint rescue team reflects the swiftness, professionalism, courage and coordination of India's disaster response agencies. In a social media post, Mr. Singh lauded the efforts of the joint team comprising the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, NDRF, SDRF and Civil Administration for carrying out the challenging operation with efficiency and resolve. Today is the day of Arafat, considered the holiest and most significant day of the annual Hajj pilgrimage. It is being observed in Saudi Arabia. More than 1.5 million Muslims from across the world have moved from Mina to the plains of Mount Arafat to offer prayers and seek forgiveness and mercy from God. Pilgrims had begun arriving in Mina yesterday ahead of the key Hajj rituals. The gathering on the ninth day of Dhul Hijjah is regarded as the spiritual peak of the pilgrimage and is among the largest religious congregations in the world. Indian authorities in Saudi Arabia have said elaborate arrangements have been made for more than 1,75,000 Indian pilgrims performing Hajj this year. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost all districts have crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda was recorded as one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. And with that, we end this news bulletin.
0: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए चलिए अब हम आपको सुनाते हैं गजल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननाश। दोस्तों आज का ये शो उनके नाम जो दूर होकर भी दिल के सबसे पास है। तो बस अपनी गर्म चाय की प्याली उठाइए और लाइट को थोड़ा धीम कीजिए और डूब जाइए शायरी के इस खूबसूरत समंदर में। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में कल 14वीं की रात थी।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों, अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे इंफरटेनमेंट प्रोग्राम आज के मेहमान, जहां आप सुनेंगे एक इंटरव्यू मारपी बाम के साथ और इंटरव्यू लेंगे गोपाल राय।
1: ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमसे बातें कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय गायिकाओं में से एक मारपी बाम, जिनकी आवाज में लोक संस्कृति की गहराई और आधुनिकता की चमक साथ साथ झिलमिलाती है। उन्होंने राष्ट्रीय मंच भारत का अमृत कलश पर गालो और आपातानी लोकगीतों का सुंदर संगम प्रस्तुत कर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों को भी छुआ। उनका लोकप्रिय गीत मुगो मुगो गालो संस्कृति, परंपरा और पूर्वजों की शक्ति को समर्पित है। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान मारपी बाम से। मारपी बाम, तो आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, ये किस तरह से बीता?
2: बचपन मेरा मम्मी पापा के साथ ज्यादा मेरा समय बीता नहीं है। मेरे मौसी ने मुझे पाला पोसा है, मम्मी का जो दीदी है, बड़ी दीदी है, उसने मुझे पाला पोसा। तो आलो में था उनका जॉब, तो उनके साथ रहा मैं बचपन का। चाइल्डहुड स्कूलिंग भी वहीं पे हुआ। उसके बाद फिर बाम से बासर, ऐसा करके बासर आते आते ईटानगर आते आते बड़ी हो गई।
1: जी, आपका जो तो संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बचपन से ही मेरा घर में ऐसा माहौल रहा कि मेरा घर में ज्यादातर लोग म्यूजिक लवर है। तो बचपन से ही मम्मी पापा चाचा चाची सारे लोग हमारा ओल्ड मेलोडीज म्यूजिक सुन सुन के आए हैं, तो हम भी वो सुन सुन के, मतलब ऐसा हमारा इच्छा रहता था कि हमें भी बराव के सिंगर बनना है ऐसा।
1: तो आपको कुछ याद है कि जब आप छोटी थी तो आपने कहा कि आपका जो घर का माहौल पूरा संगीतमय हुआ करता था, तो कुछ याद है कि आपने पहले कौन से गीत को गुनगुनाया?
2: ऐसे तो मुझे इतना अच्छा से याद नहीं है, पर घर का जो बड़ा बुआ लोग चाचा लोग जो होता है वो मुझे हमेशा छेड़ते रहता है कि बचपन में मेरा सबसे पहला गाना एक रुला के गया सपना वो था। वो अभी तक कहानी सुना के मुझे छेड़ते हैं कि रुला के गया का मीनिंग भी तुम्हें पता नहीं था होगा, फिर भी तुम वो गा के रोया करता था ऐसा। तो अभी भी छेड़ता रहता है मुझे उस गाने के।
1: तो हम चाहेंगे दो लाइन कुछ गुनगुना दे। तो

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: तो जिस तरह से आपने गाया बहुत ही सुंदर है। आप ये जानना चाहते कि जैसे अभी आपने कहा कि आपके परिवार वाले भी आपको छेड़ते थे कि जब आपको इस गीत का मीनिंग भी मालूम नहीं था तो आप रोया करते थे। अब थोड़ी बड़ी हुई तो आपको जब गाने का मौका मिला तो आपने सबसे पहले स्टेज में कौन सा गाना गाया?
2: पहला स्टेज तो हमारा ये गांव में जो कुछ प्लेज वीक वगैरह
1: जी
2: कुछ
1: जी
2: स्कूल का टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उसमें सोलो सॉन्ग कंपटीशन वगैरह रहता था हमारा। तो सबसे पहला स्टेज तो मेरा वही था। तो सोलो सॉन्ग कंपटीशन वगैरह हिंदी राउंड होता है, फिर
1: जी
2: अपना लोकल राउंड होता है, तो वही मेरा पहला स्टेज था प्लेज वीक वाला।
1: जी जब हम मारपी बाम की बात करते हैं तो मारपी बाम को लोग गालो सिंगर के तौर पे पहचानते हैं, तो आपको कुछ कहना है इस बारे में?
2: गालो सिंगर बोलो या अरुणाचल का सिंगर बोलो, मेरे लिए तो ये दोनों मत खुशी की बात है।
1: जी
2: क्योंकि गालो सिंगर बोलना सही है क्योंकि मैंने ज्यादातर गाना मैंने गालो में ही बनाया, ये अच्छा बात है मेरे लिए,
1: जी
2: खुशी की बात है।
1: आजकल के जो युवा होते हैं और ज्यादातर देखते हैं कि म्यूजिक का उनका जो चॉइस होता है, उनका जो टेस्ट रहता है, कहते हैं कि पॉप या वेस्टर्न म्यूजिक की ओर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं, लेकिन आपने गालो को चुना, ये कुछ इंटेंडेड डिसीजन था?
2: गालो को चुनना तो एक डिसीजन बोल के भी नहीं है, मैं गालो हूँ तो मैं गालो में लिख सकती हूँ, पहला गाना भी गालो में ही सुनते आई हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मैं लिख सकती हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे गालो लैंग्वेज डायलेक्ट पता है तो मैं उसको फील करके लिख सकती हूँ।
1: तो जब लिखने की बात आती है तो कितना चैलेंजिंग है कि अपने मदर टंग में लिखना, अपने गालो डायलेक्ट में लिखना?
2: इसमें एक्चुअली ऐसा है कि पहले का जो हम सीनियर सिंगर्स का जो हम गाना सुनते आए हैं तो उसमें बहुत कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिनको हम बोलते हैं गा लेते हैं, फिर भी कुछ कुछ वर्ड

0: क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में आप गाना बनाओ तो वो लोग भी समझते हैं, इसीलिए
1: जी
0: मैं ऐसे ही कोशिश करती
1: जी
0: हूँ।
1: आपने जो गाना लिखा है उसमें कुछ जो लिखा है उसमें से कुछ एक गाना गुनगुना दीजिए।
0: कुछ रिसेंट गाना जो एक बहुत इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में लड़कियों ने काफी पसंद किया था उस
1: जी
0: गाने को, नमो मिला मिला करके, तो ये मेरा भी बहुत दिल का करीब एक गाना है। इसमें एक है कि सेकंड वर्स जो है इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरा गाना का टाइटल है नमो मिला, तो मैं वही लाइन सुनाना चाहूंगी।

0: बहुत खूब। कहते ना कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। जब आप गीत को बनाती, गीत को लिखती हैं, सीनियर्स को शायद दिखाती होंगी या बोलती होंगी, तो कुछ वो भी एडवाइजेस सजेशंस क्या देते हैं जो एकदम जस्ट गालो लैंग्वेज या गालो डायलेक्ट बोलते हैं?
1: जब भी मैं गाना लिखती हूँ, अपने सीनियर्स जो भी है, अच्छा लिरिसिस्ट हमारे
0: जी
1: गालों में बहुत सारा अच्छा अच्छा लिरिसिस्ट है, मैं सबसे पहले तो रोकमबादो सर को, हेंकर रोकमबादो करके हमारा एक बहुत मशहूर लिरिसिस्ट एक है गालो समाज में,
0: जी
1: तो मैं हमेशा उनको भेजती हूँ, सर आप एक बार चेक कर दीजिए, क्रॉस चेक कर दीजिए, अगर कुछ लाइन्स में आप चेंजेस करना चाहो तो मुझे आइडिया दीजिएगा ऐसा।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए जो आपको मेंटरिंग करते हैं। जब आजकल के जमाने में जब आप गालो गाना लिखने बैठते हैं, तो पुराने जमाने के जो लिरिसिस्ट थे बहुत ही जस्ट गालो वर्ड्स यूज करते थे। मार्फी बाम जो है गालो सिंगर है अरुणाचल प्रदेश की। आजकल देखते हैं कि जो गालो के पुराने सॉन्ग्स हुआ करते थे उसे रिक्रिएट किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या ये करना सही है या नहीं है?
1: ये मैं तो खुद भी करना चाहती हूँ, बहुत सारा गाना ऐसे है कि पहले रेडियो जमाना में जो गाना होता था और कैसेट के जमाने में जो टेप कैसेट जमाने के
0: जी
1: जो सॉन्ग्स है, तो वो लोग क्या होता है कि बहुत सारा सॉन्ग इतना अच्छा मेलोडी है उनका, इतना अच्छा धुन है, सुन के ऐसा होता है कि हम बचपन से वो सुनते आए हैं, तो हम इन दिनों बड़ा होते होते हमें भी ऐसा लगता है कि अगर इस गाने में अभी नया म्यूजिक के साथ ये बने, यूट्यूब वगैरह में अपलोड हो, ऐसा होता है कि अभी नया बना के हम जो यूट्यूब वगैरह में डालेंगे उसका क्वालिटी तो गिरने का चांसेस बहुत कम है ना,
0: जी
1: और वो गायब होने का उसका चांसेस भी बहुत कम है। पहले जो होता था टेप कैसेट वगैरह का, जो रेडियो वगैरह का जो सॉन्ग्स होता था उसमें, उसको इन दिनों कन्वर्ट करके MP3 वगैरह जरूर बनाता है पर क्वालिटी गिर जाता है,
0: जी
1: तो वो हम लोग सुन के ऐसा फील करता है कि हम आर्टिस्ट लोग सुन के, सिंगर्स लोग, ऐसा लगता है कि इसका म्यूजिक बिगड़ गया कन्वर्ट करके, तो इसको हम एक नया म्यूजिक दे सकते हैं। पता नहीं दूसरा सिंगर्स का कैसा होता होगा, पर मेरा ऐसा बहुत सॉन्ग्स है लिस्ट में जो इसमें अगर नया इन दिनों कुछ नया म्यूजिक आए, इसका म्यूजिक क्लियर हो, वोकल भी क्लियर हो, तो कितना अच्छा होगा, ये
0: जी
1: ऐसा बहुत है मेरे लिस्ट में
0: जी
1: भी।
0: उस लिस्ट में से कुछ एक गाना जो गा सकें?
1: लिस्ट में से तो गाना बहुत है, पर जैसे कि हमारा लेतोई का तो मैम का जो गाना वगैरह जो मैंने सुना है कि वो रेडियो वाला सॉन्ग है,
0: जी
1: वो कैसेट वगैरह में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ वो, तो उनका गाना जो है तो वो मैं फिर से बनाना चाहती हूँ, मैं बहुत साल से सोच रही हूँ, मैंने परमिशन भी मांग रखा है पर अभी
0: जी
1: तक हो नहीं पाया कुछ। उनका गाना, दो तीन गाना बहुत अच्छा है, तो उसमें से

0: ये एक बहुत प्यारा गाना है, तो मैं इसे वापस फिर से बनाने का मुझे मौका मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
1: जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो गाने बनते हैं वो YouTube में डालते हैं, व्यूज भी अच्छा आ जाता है। क्वालिटी की बात कहें तो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। आजकल जो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, या वो कोई राइटर ही क्यों ना हो, आजकल कुछ भी लोग करते हैं YouTube पे डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि YouTube में डालना, अपलोड करना कितना चैलेंजिंग है और कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है?
0: YouTube का बात करें तो इसमें दोनों ही चीज़ें जो आपने बोला, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है
1: जी
0: और फिर आप चैलेंजिंग पार्ट ये है कि अगर आपको कुछ अपना ओरिजिनल्स बनाना है, प्रॉपर गाना और वीडियो, ये दोनों अगर आपको करना है तो इसमें बहुत चैलेंजिंग है। एक तो खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ऑडियो और वीडियो में, तो इतना मेहनत करने के बाद हमारा भी एक खौफ होता है कि उम्मीद होता है कि हम ऐसे अच्छा अच्छा हमने बहुत किया, इसमें बहुत मेहनत किया तो हम इसे यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो हमें अच्छा व्यूज़ मिलेगा तो लोगों को पसंद आएगा। ऐसा ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट ही होता है कि
1: जी
0: हम हमारा मेहनत और जो हमारा टाइम एनर्जी जो भी लगा, हमें जो अच्छा लगा वो लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है, उसमें बहुत चैलेंजिंग है।
1: लॉस होने का चांसेस भी रहते
0: हाँ,
1: हैं।
0: लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है
1: जी
0: जब आप
1: जी
0: अपने ओरिजिनल्स वगैरह में काम करो तो।
1: जी अरुणाचल प्रदेश के जब म्यूजिक की बात करें, तो वीडियो एल्बम्स की बात करें, तो जो यूट्यूब में अपलोड हुए हैं, व्यूज भी मैटर करते हैं। उनमें से मार्पी बाम भी एक ऐसी सिंगर है जिनके बहुत ज्यादा व्यूवर्स मिला है, तो इसमें क्या कहेंगे?
0: हाँ, मेरा एक दो गाना है जिसमें मिलियन व्यूज कमाया, तो शुरुआत ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भी हम ऐसा ही ऑडियो बनाते रहना हमारा भी अभी ये भी आउटडेटेड हो गया, वीडियो वगैरह भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर ऐसे वीडियो गाना बनाने के बाद में वीडियो करने के लिए फिर किसी को हायर करना, तो कोई एक्टर को हायर करना, तो इतना बजट हमारे पास रहता नहीं है, तो इसीलिए ऐसा खुद इन्वॉल्व हो गया, चलो खुद कर ले हैं, ऐसा एक्टिंग का इंटरेस्ट है ऐसे भी नहीं है। मेन बात तो बजट इशू, किसी को हम हायर नहीं कर सकते ना उस समय, तो और भी नहीं कर सकते थे, तो उसी से ऐसा हुआ कि चलो खुद कर लेते हैं ऐसा। तो लकीली हमने जो एक मोपिन सॉन्ग बनाया था काजू काजू करके, वो वीडियो उस समय तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था यूट्यूब
1: जी
0: चैनल वगैरह कैसे खोलना होता है, कुछ आइडिया भी नहीं था। तो उस समय में ताई गुंगते भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा एक ऐसा ऐसा गाना है तो चलो ना वीडियो करके देखते हैं, तो उसने बहुत सपोर्ट किया, मान लो उसने फ्री में ही कर दिया। इसीलिए आज भी मेरे वेल विशर्स जो भी सपोर्ट करने वाले जो लिस्ट में होते हैं उनका नाम भी हमेशा टॉप में ही होगा। उसने मुझे बोला कि चलो तुम लोग अगर ये वीडियो वगैरह ये सब स्टार्ट करने का तुम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, ये करना चाहिए, तो करके ऐसे उसने एनकरेज किया, मुझे वीडियो बना दिया। पर उसने उस समय मेरा तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो उसने अपना चैनल अपलोड किया,
1: जी
0: उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा बात था कि मिलियन व्यूज हो, मिलियन क्या 1 लाख व्यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा था।
1: जी
0: तो जब कुछ ही महीने में 1-2 महीने में 1 लाख व्यूज हुआ, तब हमारा मतलब हिम्मत और बढ़ गया कि
1: जी
0: और वीडियो बनाना चाहिए, अपने चैनल में भी डालना चाहिए, ऐसा
1: जी
0: करके उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। तो अपना चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ गालो सॉन्ग्स वगैरह बनाया, फिर उसमें नॉर्मल व्यूज वगैरह रहा, उसके बाद मेरा चैनल में मैंने आधी गाना बनाया था
1: जी
0: मैंने, तो वो मेरा चैनल में वो सबसे पहले मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है वो सोलूंग गाना ही।
1: जब वायरल वीडियोस की बात करते हैं, वायरल सॉन्ग की बात करते हैं, तो मार्पी बाम को एक सॉन्ग के लिए भी जाना जाता है जिसका टाइटल शायद गाले छे गिर कुछ इस तरह का। ये गाना किस तरह से बना?
0: एक्चुअली ये गालो चगियर ये एक हमारा एक गालो एल्बम था,
1: जी
0: तो उसमें ये गालो चगियर गाना मेरा उस एल्बम में था, ये मेरा पहला एल्बम था
1: ओके
0: 2017 17। हाँ, 2017 में हम लोग ने फ्रेंड्स ग्रुप जो हमारा सिंगर फ्रेंड्स ग्रुप जो होता है, हमने डिस्कस किया कि हम लोग मिलके खुद मिलके एक एल्बम बनाते हैं जिसमें सबका दो दो गाना होगा
1: जी
0: करके।
1: जी
0: तो हम 4-5 लोग थे, तो हम सब ने अपना दो दो गाना रेडी किया, तो दो दो गाना बनाया, तो उसमें से उस दो गाने में मेरा दूसरा गाना था गाला चगियार। तो ये गाला चगियार एक्चुअली एक नेपाली सॉन्ग से इंस्पायर्ड होके मैंने बनाया,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मेरा चाची नेपाली है तो वो हमेशा बोलते रहता था कि इस टाइप का गाना, इस टाइप का लिरिक्स तुम्हारे पास कुछ है क्या, इस टाइप का कुछ बनाओ ना, ये बहुत अच्छा गाना है करके एक नेपाली सॉन्ग का उसने मुझे धुन सुनाया और कुछ कुछ उसने मुझे मीनिंग भी बताया। तो

0: मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इस टाइप का गाना तो मैं भी बनाना चाहती थी, तो इस टाइप का कुछ बनाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लड़कियों के बारे में है ये गाना ऐसा। तो उसी से नेपाली सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड होके मैंने ये गाना।
1: तो हम चाहेंगे कि ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है, तो ये गाना कुछ गुनगुना दें।

0: जी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और एक गालो सॉन्ग है मारपी बाम का, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और टाइटल है मुगो मुगो। हम ये जानना चाहते हैं, ये इस सॉन्ग को किस तरह से बनाया आप लोगों ने, कंसेप्ट किस तरह से क्रिएट किया?
1: मुगो मुगो ऐसा था कि कुछ समय ऐसा हो गया कि लव सॉन्ग्स मैंने बहुत सारा
0: जी
1: बनाया, सेहत सॉन्ग्स भी मैंने बनाया और पार्टी सॉन्ग्स भी मैंने बनाया, दो तीन जो भी होता, बहुत सारा गाना, डांस नंबर्स, लव सॉन्ग, सेहत सॉन्ग, जितना भी बनाया। अब स्पेशली अपना गालो साइटी, तो उन लोगों ने बहुत ही प्यार दिया सबको, ज्यादातर मेरा गाना अच्छा ही लगा। तो फिर कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सब गाना तो मैंने बहुत बना लिया, तो अभी मुझे कुछ ऐसा अपना एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक अपना कल्चर के बारे में, अपना एक ट्रेडिशनल फोक टच वाला एक गाना बनाने का मन था। वही मैं रिसर्च कर रही थी कि किसको बोलूं मैं। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी है कि इस टाइप का मुझे गाना चाहिए, तो आप ट्राई कर दो करके। उसी दौरान मम्मी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया, तो मुझे बोला कि पापी ये सुन के देखो, पहले जमाने में हम लोग इसको गाता था, आधा लोग जब गाता था तो आधा लोग डांस करता था, तो
0: ओके
1: उस गाने का गाना है ये, बहुत ही अच्छा गाना है, तुम इसको ट्राई कर सकता है करके। तो मैंने सुना उसका रिकॉर्डिंग, तो मुझे अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसी पे काम करते हैं करके। तो उस गाने में एक्चुअली बहुत, वो गाना बहुत एक चैलेंजिंग गाना
0: जी
1: था, उसमें बहुत अलग अलग वेरिएशन है। तो ज्यादातर गाना ऐसा होता है ना कि आप स्टार्ट करो तो एंड तक, मतलब एक सेम वेरिएशन में रहता है वो।
0: जी
1: तो इस गाने में ऐसा है कि आपको लगता है कि आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि तीन चार गाना एक साथ कट करके जोड़ दिया जैसा, फिर भी मुझे लगा कि नहीं करना है, क्या पता लोगों को अच्छा भी लग सकता
0: जी
1: है
0: जी
1: ऐसा। उसके बाद मैंने गाना रेडी किया, गाना रेडी करने के बाद में फिर गाना जब रेडी हो गया, म्यूजिक वगैरह भी बहुत अच्छा देने का कोशिश किया इसमें, गाना में बहुत खर्चा भी हुआ इसमें।
0: जी जी
1: उसके बाद फिर गाना रेडी होने के बाद में गुरु केन को दिया मैंने, मैं ऐसे ऐसे कुछ करना चाहती हूँ करके। तो मैंने जो उनको हाईलाइट किया, इस तरह से मैं करना चाहती हूँ, उसने उसी तरह से कॉन्सेप्ट रेडी किया, उसी तरह से कॉन्सेप्ट रेडी किया, अपना आइडियाज भी डाल के। उसके बाद हमने बहुत ही मेहनत से उस वीडियो को बनाया, गांव में जाके, बासर के एक गांव में जाके, तो बहुत चैलेंजिंग था ये
0: जी
1: हमारे लिए। फिर दुख की बात ये है कि इस तरह का गाने का ऑडियंस हमारे यहाँ पे शायद बहुत कम है, तो मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत क्वालिटी का म्यूजिक बनाया और क्वालिटी का वीडियो बनाने का कोशिश भी किया, कुछ
0: जी
1: नया करने का कोशिश किया।
0: जी
1: इस टाइप का जो गाना हम कोशिश कर रहे
0: जी
1: हैं
0: जी
1: इन दिनों, इन सब का भी धीरे धीरे लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा, तो
0: जी
1: धीरे धीरे ये सब भी चलेगा।
0: अब बात करते हैं रियलिटी शो के। आपने एक रियलिटी शो में भाग लिया था जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। इसका जो एक्सपीरियंस रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का, कुछ शेयर करेंगे?
1: भारत का अमृत कलश का जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा, मतलब लाइफ का, मेरे लिए ये बहुत एक खुशी की बात है कि भारत का अमृत कलश एक्चुअली फोक रियलिटी शो था,
0: जी
1: तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। हम चलो इंडियन आइडल सारेगामा तो मैं नहीं जा पाई, फिर भी इस फोक सॉन्ग के जरिए मैं मुंबई गई और इंडिया के सारे स्टेट के लोगों से मिलना हुआ, अच्छे से जानने का मौका मिला कि कौन से स्टेट का गाना किस तरह से होता है। ये तो लाइफ का एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मेरे
0: जी
1: लिए।
0: ये जो शो था फोक म्यूजिक बेस्ड शो था, तो जो दूसरे स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों से कुछ सीखने को मिला?
1: दूसरे स्टेट के पार्टिसिपेंट से मुझे ये सीखने को मिला कि दूसरा स्टेट जो है, ज्यादातर, तब नहीं पर ज्यादातर स्टेट क्या है, अभी तक अपना फोक सॉन्ग, अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग्स इसमें ही है, उनका जो भी हो, लव सॉन्ग्स हो,

0: पार्टी सॉन्ग्स हो, जो भी हो, सारा उनका फोक सॉन्ग्स ही होता है। वो
1: ओके
0: अभी तक अपना फोक सॉन्ग को ही लेकर चल रहा है। तो उनमें और हम में ये अलग है कि उनमें और हमारा अरुणाचली जो भी है, उसमें और हम में अलग ये देखने को मिला कि हमारा अरुणाचल जो है वेस्टर्न सॉन्ग्स पे फोकस कर रहे हैं।
1: जी
0: मॉडर्न सॉन्ग्स बोले तो कुछ रैप वगैरह, लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड से इंस्पायर्ड, ऐसा कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में उनका बाकी स्टेट का, दूसरा स्टेट का ये अलग है कि वो अभी तक अपना फोक सॉन्ग्स को ही लेकर चल रहे हैं,
1: जी
0: ज्यादातर स्टेट।
1: जी जी
0: तो उन लोगों का प्लस पॉइंट हो जाता है,
1: जी
0: उन्होंने अपने फोक सॉन्ग्स पे बहुत काम किया, जितना हमने नहीं किया। हमारा तो जितना पहले हम बचपन में सुनते थे, हमारा उतना तक ही है। तो जितना सुनता था, अभी भी हमारा उतना ही है, इसमें हमने ज्यादा काम नहीं किया। पर बाकी स्टेट ने अपने फोक सॉन्ग्स को, अपने फोक सॉन्ग्स के ऊपर में बहुत काम किया।
1: ओके
0: तो उनके पास में बहुत सारा फोक सॉन्ग्स का वेराइटीज है।
1: ओके
0: तो इधर उधर आपको कहीं परफॉर्म करने का मौका मिले, और कुछ रियलिटी शोज वगैरह, जैसे कि भारत का अमृत कलश, तो इसमें आपके पास में दिखाने को बहुत है
1: जी
0: और हमारे पास दिखाने को बहुत कम है।
1: जी जी
0: तो माइनस पॉइंट वही था,
1: जी
0: और उनसे मैंने जो सीखा वही था कि अपना ट्रेडिशनल, अपना फोक को हमें बरकरार रखना चाहिए। इसमें हम क्या और सुधार ला सकते हैं, इसमें हम क्या प्लस करके इसको सुंदर कर सकते हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए, मैंने
1: जी
0: वो सीखा।
1: आप सिर्फ गालो सॉन्ग ही नहीं गाती आती, जिसे मैंने एक कवर सॉन्ग देखा था, असमिस में गाई है, आप हिंदी भी गाती हैं।
0: एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा, आप क्या पसंद करते हो, क्या गाना पसंद करते हो, ये अगर मुझसे पूछोगे तो मैं हिंदी ही बोलूंगी। तो मुझे हिंदी गाना बहुत पसंद है, हिंदी गाना सुनना पसंद है, गाना पसंद है। तो मेरा फेवरेट तो हिंदी ही रहेगा, पर मैं अरुणाचल में रहती हूँ, मैं अरुणाचली हूँ, तो मैं यही रहती हूँ। तो मुझे अपना गाना भी बनाना है, और मैं गालो लिख सकती हूँ, तो ज्यादातर तो वही बनता है।
1: जी
0: तो पर
1: जी
0: मेरा, मुझे पूछेगा तो सुनने वालों को बुरा भी लग सकता है, पर मुझे अपना गाना से भी ज्यादा मुझे हिंदी गाना सुनना पसंद है, हिंदी गाना गाना
1: जी
0: पसंद है।
1: आपका हिंदी में फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे?
0: हिंदी में तो बोले तो फेवरेट सॉन्ग तो मैं ज्यादातर ऑल मेलोडी सॉन्ग सुनती हूँ। तो ऑल मेलोडी सॉन्ग्स, बचपन से मैंने पहले भी कहा कि माहौल ही वही रहा कि मेरा, हमारा घर में लता मंगेशकर का गाना बजता है, मोहम्मद रफी का गाना बजता है, तो उसी माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे ऑल मेलोडी सॉन्ग सारा, ज्यादातर ऑल मेलोडी सॉन्ग तो सारा मेरा फेवरेट ही
1: जी उनमें से कुछ आप गुनगुना दीजिए।
0: है।

0: इतना था कि आज बहुत ड्राई भी है तो मैं गाना गा ही नहीं पा रही हूँ. सो
1: जी
0: सॉरी.
1: बहुत ही सुंदर गीत है। जहां तक मुझे मालूम है ये फिल्म ममता का है और धुन बनाया है रोशन ने। और
0: वाह, इतना डिटेल तो मुझे पता ही नहीं है.
1: जब हम कोई सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो वो अपना एक पीआर रखता है, तो आप किस तरह से अपना पीआर करती हैं?
0: पहले तो हमें पीआर वगैरह के बारे में तो कुछ आइडिया भी नहीं था, और हमारा यहाँ अरुणाचल में सारा आर्टिस्ट लोग है खुद को खुद ही मैनेज करता है, तो कोई पीआर टीम कोई मैनेजर वगैरह रखने का तो ऐसा ट्रेंड तो हमारे यहाँ अभी इन दिनों ही आया है. तो इन दिनों हमारे यहाँ अभी मुझे मैनेज अभी आन एंटरटेनमेंट करता है, तो मुझे भी लगा कि खुद कब तक आप बात करते रहेंगे, खुद कब तक डील करते रहेंगे. तो कभी कभी बहुत ऑकवर्ड फील भी होता है कि अपना फीस खुद बताओ, फिर बर्गेनिंग करो खुद से, तो ये सब कभी कभी बहुत ऑकवर्ड लगता है. तो इसीलिए मुझे लगा कि आन एंटरटेनमेंट ने अप्रोच किया तो मुझे सही लगा, हाँ हमें करना चाहिए ये.
1: जी।

0: ऐसा प्रैक्टिस हमें करना चाहिए और लोगों को भी ऐसा प्रैक्टिस करवाना चाहिए, जानने देना चाहिए कि इस तरह होता है प्रॉपर वे में।
1: तो आने वाले सिंगर्स को क्या कहना चाहेंगे?
0: आने वाले जो सिंगर्स है, जैसे कि हमारा बचपन जैसे रहा, पहले तो हमें कुछ सारे गामा तो हम बस टीवी में देखते थे ना, सारे गामा वो जो रियलिटी शो, उसमें सिर्फ हम सारे गामा देखते थे। तो फिर हमें बड़ा होके हम जब यहाँ ईटानगर में हमारा जब शुरू हुआ ईटानगर वगैरह आके, तो तभी हमें पता चला कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपका गला अच्छा बनाने के लिए। आपको मतलब आप एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस रियाज का बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमारा पहले वो जमाना नहीं था, हम जहाँ बड़े हुए हैं तो वहाँ रियाज वर्ड तो हम बहुत अभी रिसेंटली सुना ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैं आने वाले सिंगर्स जो भी है, जो इंटरेस्टेड है सिंगर बनना चाहता है जो, तो मैं उसको वही बोलूंगी कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ एक दो वक्त तक चल सकता है, पर लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चल सकता विदाउट प्रैक्टिस। तो हमारा तो समय चला गया वो सीखने, अभी भी सीख सकते हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं, पर लेट हो गया ना। ये सब तो बाहर वाले बचपन से करते हैं, वो जो बचपन से करते हैं वो हम अभी से शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत लेट है। तो मैं अपकमिंग सिंगर्स जो भी बनना चाहते हैं उनको वही सजेस्ट करूंगी कि आपका तो लेट नहीं हुआ, आप अभी से आज से रियाज क्या होता है वो सब रिसर्च कर ले सिंगर बनना चाहते हो तो।
1: तो हम कार्यक्रम के समापन पर आने को है, तो इससे पहले हम चाहते कि एक और कुछ आपका कोई दिल के करीब का कुछ गीत हो वो गुनगुना दीजिए।

0: तो अंत में अब ये जानना चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों को या तो आपके फॉलोवर्स को, आपके सपोर्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं अपने सपोर्टर्स और मेरा थोड़ा बहुत जितना भी फॉलोअर्स है, मैं उनसे वही कहना चाहूंगी कि हमें सपोर्ट करते रहें। और हमने भी अभी गाना को प्रॉपर तरीके से जानना शुरू किया है, तो हम कुछ नया कोशिश करते हैं तब भी हमें सपोर्ट करें। सेम जो हमारा पुराना स्टाइल जो था उसमें जैसे सपोर्ट करते आए हैं, तो हम जब नया कुछ ट्राई करते हैं तब भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक ही स्टाइल में तो हम नहीं रह सकते, हमें भी सीखना जरूरी है। तो हम जो भी नया कुछ ट्राई करते हैं सपोर्ट करना, और कमेंट तो कर ही सकते हैं कि
0: जी
1: अगर कुछ करेक्शन करना हो तो कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला रहता है, तो वहाँ पे हमें एडवाइस दीजिएगा।
0: आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में तथा अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। अभी आप सुन रहे थे हमारा वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान।
2: चलो दोस्तों, आप सुन रहे थे वीकली इंफोटेनमेंट प्रोग्राम आज के मेहमान, आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ बेहतरीन गीत के साथ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री

0: तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार सलाम और ये खूबसूरत सा दिन मुबारक मेरे सारे रेट्रो लवर्स को। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप मेरे साथ लौट आए हैं उस दौर में जहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द शो हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों आज का सफर बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि हम घुमाएंगे यादों का वो व्हील जहां रफी साहब की दीवानगी है, लता दीदी की फकीजा आवाज है और किशोर दा का वो मस्ताना अंदाज। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल में कोई पुरानी याद ताजा करनी हो तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस संगीत में सफर को महेंद्र कपूर की आवाज में फ्रॉम द फिल्म किस्मत का वो आइकॉनिक सॉन्ग लाकू है यहाँ दिल वाले, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों पे से ये बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म काला पानी जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने. ये गाना सुनिए और इन्जॉय कीजिए. तब तक के लिए मैं लौट कर आता हूँ. सुनते रहिए रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात.

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें, ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें, ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द सो हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। आइए चलिए दोस्तों, अब पैसे अब सब के लिए लता मंगेशकर की आवाज में फ्रॉम द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ये गीत है दिल तो है दिल दिल का एतबार। ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों, हम सुनाते हैं आपको कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब दोस्तों, आप सुनेंगे अगले कुछ पलों के लिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा गीतों का संगीतों का सिलसिला जारी रहेगा।

0: 3-day visit to Sikkim. During her visit, the president will inaugurate pink buses dedicated for women, aimed at improving safe and accessible transport facilities in the state. She will also visit the Orchidarium at Ridge Park to witness Sikkim's rich ecological and floral heritage. Later in the day, she is scheduled to visit the Namgyal Institute of Tibetology, known for preserving rare manuscripts and Buddhist cultural artifacts. Millions of people from across the globe, including India, are performing Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of the 5-day annual pilgrimage yesterday. Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heatwave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
4: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3: Will become even more important to the world.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा

0: किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ

0: नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रोना FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। हेलो यो, व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जुन अन्ना। स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे कूलेस्ट टाइम लाइन में। हाँ जी, इट्स टाइम फॉर हिट्स ऑफ 90s। वो दौर जब वॉकमैन ही हमारा आईपॉड था, कैसेट्स को पेंसिल से घुमाना एक आर्ट था और गाने हम दोस्तों से कैसेट्स कॉपी करके सुनते थे। आज की प्लेलिस्ट में होने वाले हैं वही देर सारी इमोशंस, उदित नारायण का रोमांस, अलका याग्निक की स्वीट वॉइस और गोविंदा करिश्मा वाला वो क्रेजी डांस नंबर। तो रेडी हो जाओ अपनी पुरानी जीन्स पहनकर और चलो मेरे साथ।

बैक टू द 90s, शुरू करते हैं ये धमाकेदार सफर। आइए दोस्तों सुनते हैं इस शो में पहला गाना तेरी चुनरिया फ्रॉम द फिल्म हेलो ब्रदर्स।

चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, हम सुनाएंगे आपको यहाँ कुछ बेहतरीन गीत और गोविंदा करिश्मा वाला वो क्रेजी डांस मूव। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में हीरो नंबर 1 का वो आइकॉनिक सॉन्ग सोना कितना सोना है।

0: चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न लें। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
0: दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नाना साहब। सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए दोस्तों सुनते हैं एक बेहतरीन गीत सोनू निगम की आवाज में, ये दिल दीवाना। ऑनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

अंकों स्लोगन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं आओ नी नी नम नाम सी गवर्नेंस खा पॉलिसी मेकिंग मई लेवल तंगलाई मई मंग हाउ नई औकुम हमा का नम हो चीफ मिनिस्टर हिची पेमा खांडू तंगलोई कैबिनेट कलीग्स वन मने मई अनपेनमा पथमा सीएम प्रगत मीटिंग अन नेयाती ईटानगर मई औपेन ह मा गायव चीफ मिनिस्टर हिची पेमा खांडू सोशल मीडिया पोस्ट मई को मीटिंग मई औसी अन प्रोडक्टिव रिव्यू सेशन नई तंगलाई सीनियर ऑफिसर्स लुंग पीएसयू बीआरओ एनएचआईडीसीएल पावर टेलीकॉम ऑयल सेक्टर एजेंसीज खनसम एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज खनसम डीसी मंचाउ लाइफ मई मोनखाम कनमा माकानम हो डिप्टी कमिश्नर अन चेला ईस्ट सियांग हिची सोनालिका जीवानी वन मंगा मई ट्रैवल एडवाइजरी नई हेड इश्यू लाइ अन रोड डैमेज नियाती पासीघाट पांगिन खुंतांग मई हमा कायव जेट पी एम हिची अन गिफ्ट सर्कल मायूम दोबिन तंगलोई कोनसिंग मान तंगलाई वन मनाई मई निया लाइ अन खुंतांग ब्लॉकेज खनसम ब्रिज डैमेज साइट्स मई कुनू लैम मा गायव मान गनसु मई दोबिन मंचाउ लौखाई मानई कुन मान हा हिंग पेट पाक खनसम मान सामसिप हा अन मई नई नई सुम कनमा नई नई तोंग कनमा नम हो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन चा वुमन ईटानगर तंगलुई नेशनल कमीशन चा वुमन न्यू दिल्ली मई कचम वन डे जन सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार वन साउकाउ नेन मे मई डीसी कैंप ऑफिस नियाती आईजी पार्क ईटानगर मई तितांगते कनमा तिखायव डिस्ट्रिक्ट पुलिस तावांग वन मंगा अनपुन कान मई स्ट्रिक्ट आईएलपी चेकिंग ड्राइव नियाती बोमदिर नाला ब्रिज चेला वेस्ट कमेंग मई औहेट मा गायव आईएलपी डिफॉल्टर्स सामको मई नई डिटेक्ट कंसी लीगल एक्शन अंकौ चलान को इश्यूड चा सीएमवी एक्ट वायलेटर्स मई हमा कानम हो पेनमा ओकेजन सिप अन बलिदान दिवस खोंग लेट हवलदार हंगपन दादा अशोक चक्र खोनसा बटालियन ऑफ असम राइफल्स वन मंगा मई बाइक रैली लुक देवमाली हेलीपेड हाउथिंग मेमोरियल अन ब्रेव सोल्जर्स नेया बोरुडिया मई औतांगन मा गायव रैली नई कचम हंगचा ट्रिब्यूट अन सुप्रीम सेक्रीफाइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज खनसम अनवेवरिंग डेडिकेशन होंग लुकन पा लेट हवलदार हंगपन दादा मई औसी मध्यम हद मध्यम हगन मा नम हो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वन मने मई चा साम वन पी एम सवा निधि स्कीम कैंप हंगचा अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स नियाती निर्जुली मार्केट ऑफिस मई लॉन्च कन मा कायव पी एम सवा निधि स्कीम कैंप नई लुकन पा डिप्टी मेयर होंग ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिची टॉक ताबिन कामदिर हिट हो कंसी चा हल क्रुशियल फाइनेंशियल सपोर्ट चफा कोन लोकल वेंडर्स नम हो पीएम

0: trong king nam nali nơ khóc chú điếu mấy chỉ cần vào vào chập hạp bói này khám tay khám tí tí khởi mấy suốt yêu hộ xá thủ
1: सो दोस्तों आप सुन रहे थे ताइकांती श्रोताओं का समाचार, और ऐसे समाचारों को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। तो चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, और अब आप सुनेंगे बॉलीवुड अपडेट्स।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। यह दोस्तों आइए, ये है वो शो जहां हम लेकर आते हैं आप सबके लिए बॉलीवुड के चमकते दमकते दुनिया से कुछ ताजा तरीन और मसालेदार खबरें। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये शो। सबसे पहले बात करते हैं उस सुपरस्टार की जो आजकल हर हेडलाइंस पर राज कर रहे हैं। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट रणबीर।

सिंह। एक तरफ उनकी फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है, 68 देश हो चुके हैं इस फिल्म को और इस फिल्म ने 1147 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया है। पर दोस्तों, लाइफ में जितना बड़ा हिट उतना बड़ा ड्रामा। डॉन 3 से उनके एग्जिट को लेकर फिल्म वर्कर्स बॉडी ने उन पर नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया है। फरहान अख्तर ने तो भैया 45 करोड़ का डैमेज क्लेम कर दिया है। इसी सब के बीच रणबीर को सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया और पता चला है कि वो सीधे कर्नाटका के चामुंडेश्वरी टेंपल के लिए निकल गए हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करने। अब देखना यह है कि ये दोन का नया मोड़ कहां जाकर रुकता है।

चलिए अब जरा चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ। अगर आप रोमांटिक मूवीज के शौकीन हैं, तो करण जौहर की चांद मेरा दिल थिएटर्स में चल रही है। लक्ष्य और अनन्या पांडे की इस प्रेम कहानी ने अपने पहले चार दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल 18 करोड़ पार कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही आग लगी हुई है। फिल्म में अनन्या पांडे का एक भरतनाट्यम डांस सीक्वेंस है, जिसको लेकर क्लासिकल डांसर्स और इंटरनेट पर लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मिस पांडे के लिए क्लासिकल डांस मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, बट सपोर्ट भी बरोबर मिल रहा है। और फिल्म के असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने आगे आकर कहा है कि अनन्या ने सच में बहुत मेहनत की है और उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। वेल, आपको क्या लगता है? आप मूवी देखने जरूर जाइए और हमें बताइएगा देखकर आपका रिव्यू। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस जोड़ी की जिसने थिएटर्स में फिर से रौनक ला दी है। अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रिया दर्शन, उनकी हॉरर कॉमेडी भूत बंगला को थिएटर्स में एक महीना यानी पूरे 33 डेज हो चुके हैं और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 255 करोड़ का दनका बजा दिया है। अक्षय, परेश रावल और राजपाल यादव का वही पुराना कॉमेडी केओस लोग बार बार देखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर है जो पूरे सिनेमा वर्ल्ड को प्राउड कर रही है। रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल एपिक राजा शिवाजी ने इतिहास रच दिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और सैराट का रिकॉर्ड तोड़ कर ये बन गई है हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्म ऑफ ऑल टाइम।

तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े, सबसे जूसी बॉलीवुड अपडेट्स। रणबीर का ड्रामा हो या रितेश का रिकॉर्ड, डी टाउन में हर दिन एक नई फिल्म है। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि अब आप सुनेंगे एक बेहतरीन गीत। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम द फिल्म बर्दाश्त, और इस गीत है जन्नावे आली, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और सो तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब दोस्तों आप सुनेंगे वांचो सोथाओ का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेले मिनिसा आज तारीख मंगलवार इपहसों आजम्बाजी पुनी मिनट मुके पिशम के वांचो साइका पं कापई पम कहो पाई फाले वंग का वंग सु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मा आखो लाले के एनडीए गवर्नमेंट ने देश अपन वंग क्या फई मा आनी एरे जंग पुंबन आनी लनले सतना हजा बामा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा मिस्टर मोदी ए 2014 जंग पुंग मे लेट निचा आजोक तारीख नि देश गवर्नेंस विजन हियर लीडरशिप आजे अजन ले हई ले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सौ सौ के चांगपू बो महाजा फाइम खंग ए ले एन के जंग पुंग बन आनी इंडिया सिविलाइजेशनल हियर डेवलपमेंट होमोखोसट जर्नी जोंग माता आसु अमय आथोलन दुवान अंगसद्वाले वनले मिस्टर सिंह आज बो मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप मा इंडिया ए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लीडरशिप हिया देश सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आचाक आजों क्या तखं ए ओम लाले पांगनु होली होमोखोसट लम मा यौम क्या क्या तो कायले थोलन ले ले एनपु बोमा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास स्लोगन तो ले मोकसा नुई तै क्या होचा पांगनु लेवल तो जो गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग होमोकोसत मा ngai thole jo ngan tai pule chu wan de अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए ची फै ची कैबिनेट मिनिस्टर थम चु अजोइ ला लेले आनी इटानगर मा होवांग थम अंगपा सीएम प्रगति मीटिंग टू सो आसो अफोले खांडु एजबा मता सोशल मीडिया पोस्ट का हो महाजा मीटिंग मो वन क्या मा हजा टू सो मा खत खा खा क्या डिपार्टमेंट फो पीएसयू फो बीआरओ एनएचआईडीसीएल पावर टेलीकॉम ऑयल सेक्टर एजेंसीज फो बोमा मामू एग्जीक्यूटिंग ऑथोरिटीज हो थम अंग क्या आचोंग आलो ऑफिसर्स थम फै स्टेट अंग पंग नुई तो क्या जो डीसी फो जो लाइफ मा हका हई लेता productive review session to so angot aso dawala ban kya bo ma haja

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का एरोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। आइए सुनते हैं अब कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, उसके बाद आप सुनेंगे ईद उन्नीस में श्रोताओं का समाचार।

0: और दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब दोस्तों आप सुनेंगे अगले कुछ पलों के लिए ईद उन्नीसवीं श्रोताओं का समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे वांछु श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है ईद उन्नीसवीं श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर चुला पुचे जानहुल एहो आंदोलनी एतनिची ईद उन्नीसवीं आहोला के जी दरगलम्बो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में हेतनेला एनडीए गवर्नमेंट खागेबा एतन्याओ हुरुनी नुबादा ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में ओना ला होगा ने इंडिया गवर्नमेंट में इंडिया है आदि तोगेबा एगलादा लगादा आहोगा इनु एजर कैन हुलुपी माचिनु शोला पुची जनहु एहो माचिनी एनडीए गवर्नमेंट आदि तेगला माने एचाहोलीबा आदि काची आयोन बतांदो प्रबान जो तेगलादा ने सिंह में लगाने एचा गवर्नमेंट में आदि काची इमुखे लाने के ने इंडिया है आदि प्रबान जो तेगा लगादा आहोगा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में ओना ईटानगर माने चीफ मिनिस्टर ची डेवलपमेंट मीटिंग ची नेगामा गवर्नमेंट आजा अपुया लंब्रो पीएसयू आलम्ब्रो बीआरओ एनएचआई डीसीएल पावर टेलीकॉम ऑयल एजेंसी आलम्ब्रो दोने इकिशा प्रोजेक्ट अजिया एजेंसी दोने डीसी आलम्ब्रो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माने अहुआ बदा आहोगा लिबाचा अनिनी अनिमी आयोग में पासीघाट पंगिंग एबगाची माओ काप्रो मा किलोमीटर बिलोंग कलामाती आतिकोची आय छे हुगे एम तुला बचा तुगे ने आय छे मा छिया में उतोगे ने छिजी ना ने इशियांग दिशी सोनालिका सिवानी में लाते गदा आओगा दिशी में अली लाते आ काकोपा है इकिशा गया एड्रेस टिप है कोटर ममा हाथी का बमहो पी डब्ल्यू डी में आ आय छे अपते नाओगे बने इमुठुई जोगा दा ला होगा अपर सुबसी डिस्ट्रिक्ट गीबा सर्कल में ची जेट पी एम मायूम दोबिन में इकिशा इमो लम्ब्रो अतुगे ने आ सर्कल अतिका में ची आनिमी आयोग में आए छे दोपहे दो ने सा यहाँ दे बमा अतुगे बदा आहोगा गीबा सर्कल को कोखागा अतिपु आसुहु मगा में ची एजर मगा दो ने माउंबियालो इमो लम्ब्रो है अली तू को गे में तान दो इम्पक्के बा एबदा ने दुबिन में आहो मीडिया मु लाके गाने आतिकाची एम एल ए दो ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में उन्हें ची रुगा मिची पुआ शो ने अतु तेहना लगाता आहोगा आ महो आतिकाची इमु आरोग्य बने अरुणा डिपार्टमेंट आलम्ब्रो में आया आए छे है दुमी अपते जेना बना ने जेट पी एम में लाओगता आहोगा अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ए पी एस सी डब्ल्यू में मैं दिल्ली में चे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गो आरोगा गए ने इन्हें गबाने एचाला पुची जानियो है कि निमाचिनी ईटानगर ची इंदिरा गांधी पार्क माचे डीसी कैंप ऑफिस मने इन्हें गबाने जन सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार अखगा उदा ला होगा रुगामी आजीगा याको नंबर में आ माचिनी आई जी पार्क मा इगा ने एन एच रू में अको बे ला के तुझी ना ने कमीशन माच में ला होगा ने अरुदा डॉक्यूमेंट आजो प्रभु गिने इगा ना रेगा दा आहोगा तवांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस में बुनी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट मचे बोमदेरी नाला माचाफा ने अहुता ने इगा करो अनब्रोचे इनर लाइन परमिट आई एल पी पास आजो प्रा गाड़ी मचे अरुदा का कोपादो ने इकिशा आयमु एगा ड्रग अथुसुवाजी महो आई एल पी आजो प्रा इन लामी मुका सुते आई दो ने डॉक्यूमेंट आजप्रा इन लामी गाड़ी मंगा सुतेगा लदा ला होगा पुलिस आलम्ब्रो में अली प्राम्रा जगह बदा ने होम मिनिस्टर ममा नातुम में नरगादा आहोगा जोता इजी महावासी बा तिराप डिस्ट्रिक्ट में चे चपहे हवलदार दो ने शिपे पहो ने अशोक चक्र अवार्ड आगा बा हंगपंग दादा शी वोलामा ने खुंसाती को खाजिगा असम राइफल्स बटालियन में बुनी देवमाली हेलपेट मने आ सी चिम्रोचा बोरदोरिया आतिको लिबा बाइक रैली ठूतिगा लादा ला होगा आ सी बा इनो हूनु बा वालामा लाता चिगने बाइक रैली ठुगा मा असमय फॉल्स चपहया नम्रो दोने आतिको चिमे आमिचे यु हु इमु मे थुम बेगा बदा ला होगा इटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी मे आसुनि गबाने निर्जुलिमाचे मार्केट ऑफिस माने इचु आमया नम्रो गबाने पीएम सुवानदि अखानगा बदा ला होगा आईएमसी डिप्टी मेयर डॉक्टर बिन कामदेर मे आ कैंप अखानगा माने इचु आ আমি পাহু দাজিগাও দা লা হোক মাহ পাহু সাগুমি অনলাইন মানে আমি হায়ুগা আমি আনব্র হে মাহু নি পাহু চিলাও না দা লা হোক আনাপ্রাদ নে তামবে আমি লাপ্রগে ইচু আমি আয় আমি আ কেম্প মা ইগা নানে ডিপুটি মেয়র মে রেগা দা আ হোক এটা নিচে ইতুমিসমি আহো আলিং মাহ দোবাই
3: এ চা আকাশবাণী ইটানগর ডিব্রুগড় নালে ইদ মিসমি প্রোগ্রাম মা এচমতা আসে আর সখিয়া মাহ এতানি হ্যান্দ আনি মেনাচে চাষেছি আর যে
0: শ্রোতা দোস্ত আপ সুন রহে থে ইদু মিসমি শ্রোতাও কা সমাচার আকাশবাণী ইটানগর কা রোড এফএম 103.1 মেগাহার্টজ পে চলিয়ে দোস্ত আব আপকো সুনাতে হ্যায় কুছ হিন্দি ফিল্ম সংস

सुते दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी मेरे अलविदा करने का वक्त। लेकिन दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबका मन पसंदीदा आरजे मंजू पामो, जो बने रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों आई होप कि इस सभा में प्रसारित जितने भी कार्यक्रम है आप सबने बहुत बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि यहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब मैं आप सभी को बता दूं, आज के सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक की तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। तो अब मुझे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। थैंक यू सो मच दगमे नानास जी, आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। श्रोता स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा। ये भी बता दो आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम, और मैं हूँ आपकी दोस्त आज के इस सफर में आपकी आरजे मंजू पामो। दोस्तों, असफलता सिर्फ एक नया अवसर है। अगर आप कभी फेल हो जाते हैं या सफल नहीं होते हैं तो निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि ये आपके लिए एक अवसर है फिर से और बेहतर शुरुआत करने का। चलिए दोस्तों, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको ज्ञान एवं मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर। नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हर रोज की तरह मजेदार गीतों के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होंगी आपके साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के दौरान। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके आरजे मंजू पामो। हाथ जोड़कर जो नमस्कार किया जाता है उसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। नमस्कार में झुकता है सिर प्यार से, यही तो रिश्ता जोड़ता है संस्कार से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे नमस्कार करने के पीछे का सच, यानी कि नमस्कार करने की जो आदत है, नमस्ते करने की, इसके पीछे की सच क्या है। भारत में नमस्कार करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। नमस्कार करते समय हम दोनों हाथ जोड़कर सिर थोड़ा झुकाते हैं, जिससे शरीर और मन पर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाथ जोड़ने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और मन में शांति का अनुभव होता है। उंगलियों के सिरे को जोड़ने से एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं, जिससे याददाश्त और एकाग्रता में मदद मिलती है। हाथ मिलाने की तुलना में नमस्कार में शारीरिक संपर्क नहीं होता, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी नहीं होता है। नमस्कार करने से सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर और सकारात्मक प्रभाव यानी कि भाव प्रकट होते हैं। सिर झुकाकर नमस्कार करने से मन शांत होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि क्यों करते हैं हम नमस्कार और इसके पीछे का सच क्या है और सारी दुनिया ने इसे क्यों अपनाया है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक खूबसूरत से गीत का।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का सुल्तान फिल्म से। मन कितना खुश हो जाता है दोस्तों, जब कोई आपको नमस्कार करके मुस्कुरा के अभिवादन आपका करता है। नमस्कार भारतीय संस्कृति की एक बहुत सुंदर परंपरा है, जिसके पीछे स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक संतुलन से जुड़े वैज्ञानिक कारण भी हैं। आज दुनिया भर के लोग नमस्ते करने की आदत अपना रहे हैं, क्योंकि यह केवल अभिवादन का तरीका नहीं है, बल्कि सम्मान, स्वच्छता और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। नमस्ते में शारीरिक संपर्क नहीं होता है, इसीलिए बीमारियां फैलने का खतरा कम होता है। इसी कारण महामारी के समय इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। नमस्ते सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर और विनम्रता दर्शाता है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। योग, ध्यान और भारतीय परंपराओं की लोकप्रियता बढ़ने से लोग नमस्ते को भी अपनाने लगे हैं। नमस्ते करना आसान, शालीन और हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। हाथ जोड़कर नमस्ते करने से शांति और पॉजिटिविटी का भाव आता है। नमस्ते आज केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी आदत बनता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप भी इस आदत को बहुत ही हंसी खुशी अपनाते हैं और अपने सामने वाले व्यक्ति को हमेशा नमस्कार करके ही अभिवादन करते हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: श्रोता, तीन पत्ती फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। और इसी गीत के साथ ही बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नोक्ते डायलेक्ट न्यूज। और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव करने का निर्णय लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ईटानगर में पहली सीएम प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने पासीघाट बांगिन सड़क पर हुए नुकसान के संबंध में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटन्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूहों ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों के आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने की मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया है कि अमेरिका इस पहल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा है कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हुए उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीति प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज ऊर्जा सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। एक ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ है। आज जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विपक्षीय द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य में निर्वाचित राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल आगामी 23 जून को समाप्त हो रहा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र और वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देश वाले एकीकृत बैगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के पर्याप्त उपाय किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ईटानगर में पहली सीएम प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रमुख विभागों पीएसयू, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, बिजली, दूरसंचार, तेल क्षेत्र की एजेंसियों और अन्य कार्यकारी प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सार्थक समीक्षा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यभर में जिलों के उपायुक्त भी लाइव जुड़े हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सीएम प्रगति का उद्देश्य जवाबदेही, गति और लोगों के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने पासीघाट पांगिन सड़क पर हुए नुकसान के संबंध में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की है। यह एडवाइजरी पासीघाट डिवीजन के लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा स्थिति की रिपोर्ट दिए जाने के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पासीघाट पांगिन सड़क एनएच 13 पर बिलोंग कालामिटी इलाके में 2x1 के 145 किलोमीटर के क्षेत्र में पहले दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और लगातार चट्टानों के खिसकने की आशंका के मद्देनजर भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों का वाहनों के जानमाल के नुकसान पर पूरा अंदेशा है या वे किसी खतरे में पड़ सकते हैं। ये ट्रेवल एडवाइजरी आसपास के जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई है और आम जनता की जानकारी के लिए भी प्रसारित की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा है कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
5: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए

0: सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफत का दिन है। दुनिया भर में लाखों मुसलमान जुलहिज्जा की 9 तारीख को मक्का के आसपास अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं ताकि वे हज का प्रमुख अनुष्ठान कर सके। जायरीन नमाज़ुद्दीन में खुतबा ए हज या हज का उपदेश सुनने और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस अनुष्ठान को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा में जारियान कल सुबह कुर्बानी और शैतानी को कंकर मारने के प्रतीकात्मक अनुष्ठान के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 175 लाख से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका दिया जाएगा। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांची सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शब्दसाची भट्टाचार्य। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest for growth for prosperity. Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific. In a statement, Marco Rubio said the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this. Quad nations also reaffirmed their commitment to defending the rule of law, sovereignty and territorial integrity. The Quad Foreign Ministers Meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. They reiterated the importance of adhering to international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea with respect to navigational rights and freedoms and the safety and uninterrupted flow of global commerce through the Strait of Hormuz and the Red Sea. India and US today signed key bilateral framework aimed at securing the supply, mining and processing of critical minerals and rare earth elements. The landmark agreement was exchanged between External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio in Delhi. Dr. Jaishankar said the framework will strengthen resilient and diversified supply chains. Indian Home Minister Amit Shah today visited the Sanchu border outpost along the India-Pakistan international border in Rajasthan. He interacted with border security force personnel deployed in the area and lauded their dedication in safeguarding the nation's borders. During the visit, the Home Minister dedicated the Vibrant Villages program to border regions of the state under the initiative Infrastructure and Essential Facilities, including education, roads, electricity, and employment opportunities will be strengthened in villages located along the international border. The Directorate General of Civil Aviation has issued a standard operating procedure, SOP,

नमस्कार दोस्तों, नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए दोस्तों, जारी रखते हैं मनोरंजन के सिलसिले को, आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

प्यारे दोस्तों, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। पहला गीत आपने सुना नीति मोहन और लखविंदर वदाली की आवाजों में, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को आशिकी 2 फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

0: दोस्तों, दर्शन रवाल के गाए हुए चंदू चैंपियन फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव्स होता है यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें, ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखे। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखे, ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए

पेड़ क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर। और इस वक्त हमने पेश किया है इस गीत को उमराव जान फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में।

श्रुति अंजाम फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। बताना चाहेंगे आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में यानी कि ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे स्पेशल प्रोग्राम ऑन 12 इयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज टेन्योर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है एनडीए सरकार के 12 वर्ष तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के प्रगति पर ये विशेष कार्यक्रम।
1: हम अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं

0: कि हमारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश को लास्ट 2 ईयर्स में जो यहाँ पे अटेंशन मिला है, इससे पहले हम लोगों को भारत सरकार की ओर से नहीं मिला है। अरुणाचल के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये उनके लीडरशिप के कारण से। और मोदी साहब हमेशा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक पॉलिटिकल दृष्टि से वो कभी तुलना नहीं करता है। उनका हमेशा यही कोशिश है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में भारत सरकार ने जो हम लोगों को अनदेखा किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन एज ए होल, उसका भरपाई जो है ऑनरेबल पीएम साहब चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को होना चाहिए। और लास्ट पिछले 12 साल में ऑनरेबल पीएम साहब ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का डायनामिक्स ही पूरा शिफ्ट कर दिया है।
1: लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। पिछले 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे जुड़ते हैं और विकास कार्यक्रमों के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लेते हैं, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके।
2: डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए।
1: अरुणाचल प्रदेश के लोगों के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2019 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार निगरानी के कारण डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ। डोनी पोलो एयरपोर्ट पर नए और स्थायी टर्मिनल भवन प्रति घंटे 800 यात्रियों और सालाना 15 लाख तक यात्रियों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है।
3: जब से ओलोंगी एयरपोर्ट आने के बाद में हमारा अरुणाचल का जितना भी स्पेशली जो एजुकेशन में जो जाता है, मेडिकल में जो जाता है, और दिल्ली में जो अपना जो है गवर्नमेंट का, इसे गवर्नमेंट का लोग जाता है, अच्छा सर्विस मिल रहा है।
1: नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को नेशनल कैपिटल से ट्रेन सर्विस से जोड़ना पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी मिशन है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2015 को अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन से दिल्ली के बीच पहली एक्सप्रेस ट्रेन नाहरलगन नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बॉर्डर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह दुनिया की सबसे लंबी 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित बाईलैंड टनल है।
1: नरेंद्र मोदी ने ये जो किया है, अब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपना भाषा से, तो ये हम लोग का एक राष्ट्र एक देश से दूसरे देश को मिलाने के लिए जो है बहुत, मैंने बॉर्डर का जो है काम बहुत बढ़िया से हुआ है।
0: वेस्ट कामेंग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचीफू टनल का उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। यह सुरंग बालीपाड़ा चारद्वार तवांग रोड पर नेचीफू दर्रे के पास स्थित है। यह 500 मीटर लंबी डी आकार की सिंगल ट्यूब डबल लैंड सुरंग है। यह लगभग 5,700 फीट की ऊंचाई पर बनी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 12 साल में अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। लोहित जिले के वाक्रो सर्कल में रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएमजीएसवाई तहत कामफाई में राज्य का सबसे लंबा पुल बना है, जो कि करीब 193 मीटर लंबा है। इस पुल का उद्घाटन 2 मई 2026 को उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने किया। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है। राजधानी ईटानगर और बंदरदेवा के बीच डिक्रोंग नदी के पास भूस्खलन से मॉनसून के दौरान यातायात प्रभावित होता था, पर अब कारसिंगसा सिंकिंग जोन में नदी पर ब्रिज बन जाने से अब हर मौसम में कनेक्टिविटी आसान हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी बेंच के नए भवन का उद्घाटन 10 अगस्त 2025 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने किया, जो राज्य के न्यायिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद 4 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुई यह अत्याधुनिक सुविधा न्याय की सुलभता और आशा का प्रतीक है।

0: सुशासन मोदी सरकार का मूल मंत्र रहा है और जनता को एक ही छत के नीचे सभी मंत्रालयों की सेवाएं उपलब्ध हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2018 को सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर के नए भवन का उद्घाटन किया।
1: उसी प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण काम, और वो मैं अपने आप में गर्व समझता हूं, श्रीमान दोरजी खंडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर का आज लोकार्पण करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2018 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम, 3 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, एक रेस्टोरेंट और प्रदर्शनी हॉल, एक मीडिया रूम, प्रशासनिक ब्लॉक और 200 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा के साथ खुला एम्पी थिएटर भी है। भारत तिब्बत सीमा पर बसे गांवों से नागरिकों का पलायन

0: राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भारत सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चीन की सीमा से लगे भारत के पहले गांव काहो और किबिथू में ऑल वेदर रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। काहू विलेज में स्थानीय लोगों ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लाभ उठाकर होम स्टे शुरू किया है।
1: वो सबसे रोड अच्छा हो गया, टूरिस्ट लोग जगह जगह से आते हैं, उसके बाद हम लोग का भी कुछ इनकम हो रहा है, दुकान वगैरह होम स्टे से इनकम हो रहा है। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए।
0: अपर सियांग जिले के तुतिंग का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से त्वरित विकास हुआ है। भारतीय सेना ने तुतिंग में डेंटल केयर सेंटर की स्थापना की है, जिसका लाभ सेना के साथ ही स्थानीय नागरिकों को मिल रहा है। सेना ने तुतिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की है, जिससे स्थानीय युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी तुतिंग का पब्लिक को इतना सहायता कर रहा है और डेवलपमेंट भी इतना लाके दे रहा है, करके दे रहा है, और मेरा युवा स्टूडेंट यूथ सबके लिए इंडियन आर्मी ने इतना काम किया है। ये स्टेडियम में, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मेरा लड़का लोग तुतिंग का जितना भी युवा लड़का लोग इधर ही खेल खेलता है, इसलिए हम लोग का इंक्रेस हुआ कि नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट।
0: बॉर्डर कनेक्टिविटी से स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण तवांग और मेचुका है। ऑल वेदर रोड बनने से अब हर मौसम में तवांग में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। एलएसी के करीब बुमला बॉर्डर पोस्ट को देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक हर दिन पहुँचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से तवांग जिले के जिमिथांग विलेज में तेजी से मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है और गांव के लोगों का जीवन आसान हुआ है। पीएम मोदी की बॉर्डर एरियाज में त्वरित गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पहल मेचुका के लिए वरदान साबित हो रही है। मेचुका के स्थानीय नागरिकों का कहना है, रोड एंड मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार से हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।
3: नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, मैं भोपाल से आ रहा हूँ और मेचुका आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना प्यारा शहर है। मतलब यहाँ के घर मतलब हर तरीके से यूनिक है। मतलब दो दिन पता ही नहीं चले कैसे निकल गया मेचुका में। मन तो है नहीं जाने का, पर फिर आएंगे वापस।
0: अरुणाचल प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। देश का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबानसिरी जिले में स्थित जीरो में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित इस पार्क की लागत लगभग 50 करोड़ रूपए है और यहाँ पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम भी शामिल है। इसमें एक एक्वा म्यूजियम, फिश हैचरी, प्रशिक्षण केंद्र और एक्वा कल्चर से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। वर्ष 2014 में पीएम मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश ने कला एवं संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। देश का तीसरा और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश के ज्योति में स्थापित किया गया है। FTII ज्योति के स्थायी परिसर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को किया। पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन के नए 24 घंटे के सैटेलाइट चैनल DD अरुणप्रभा का भी उद्घाटन किया और इसी दिन से डेली न्यूज बुलेटिन DD न्यूज अरुणाचल का भी शुभारंभ हुआ। यह चैनल दूरदर्शन द्वारा संचालित 24वां चैनल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि, बागवानी और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कड़ी में पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का नया एकेडमिक सह प्रशासनिक भवन और ट्रांसिट हॉस्टल 5 जनवरी 2023 को बनकर तैयार हुआ। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में देश के तीसरे और नॉर्थ ईस्ट के पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। इस केंद्र में बागवानी पौधों के लिए एक विशेष क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है ताकि राज्य में बाहर से आने वाले सेब, कीवी और अन्य टेम्परेट पौधों की गुणवत्ता और कीट मुक्त स्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह संस्थान क्षेत्र में किसानों को उन्नत पौधे देने और असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्य में सेब, अखरोट व कीवी की पौधावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में देश का 50% से अधिक कीवी फल का उत्पादन होता है और इसे ध्यान में रखकर डोनर मंत्रालय ने 20 मई 2026 को अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। लगभग करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक कीवी की बागवानी का विस्तार, वैल्यू एडिशन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। देश भर में सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के चयनित युवाओं को एग्री स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाती है। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए एग्री अलाइट सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए तक की सीड मनी प्रदान की जाती है।
4: ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये ट्रेनिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम लोग अरुणाचल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, जो हम लोग कोई रोजगार नहीं है, कोई उन लोग का स्कोप नहीं है। ये ट्रेनिंग सीख के हम लोग बैंक लिंकेज हम लोग करा देता है। बैंक लिंकेज में जैसे कि मुद्रा है, मुद्रा लोन है, इसमें हम लोग लिंकेज करा, हम लोग बैंक में फिर हम लोग ये लिंकेज जो हम लोग का रूरल डेवलपमेंट हेरिटेज हो जाए हम लोग लिंकेज करा है। इसमें टीपी जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो है, प्रोवाइडर जो है हम लोग का एक्सेस एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, वो टीपी है और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपेनलमेंट है और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इंपेनलमेंट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए और वर्ष 2017 में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स नाहरलगन की स्थापना हुई और 1 अगस्त 2018 को MBS की 50 सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज का पहला शिक्षण सत्र शुरू हुआ। शिक्षण सत्र 2024-25 से कॉलेज में MBBS की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 हो गई है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 5 साल के मानदंड पूरे करने के बाद ट्रिम्स नाहरलगन को पूर्ण विकसित मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है।
5: प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी on 15th of February 2017 formally inaugurated the establishment of TRIMS Medical College in Arunachal Pradesh by laying the foundation stone for the economic block of the institution. That our state government has been very supportive and they are very keen to see TRIMS realize these dreams, and we hope that this institution will stand the test of time.
0: भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले अरुणाचल में अपनी छटा बिखेरती है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को ईटानगर से देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स नेक्स्ट जेन GST सुधार GST बजट उत्सव का शुभारंभ किया। ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के छोटे व्यवसायों की जीवंतता की सराहना की। स्थानीय स्टॉलों पर सुगंधित चाय और स्वादिष्ट अचार से लेकर हल्दी, बेकरी उत्पाद और हस्तशिल्प तक स्वदेशी उत्पादों की एक

0: प्रभावशाली श्रृंखला प्रदर्शित की गई।
1: बताइए जीएसटी के बाद क्या हुआ?
2: जीएसटी के सर अभी टू पॉइंट नॉकी इसके वजह से अभी हम लोग को नए काफी सर रिस्पेक्ट जैसे कि सर इसका हो गया जी का पहले 12% जीएसटी का अभी 5% हो गया इसकी वजह से इवन जो कंज्यूमर है हमारा कस्टमर है उनका में भी हमारा सेल्स में भी सर
1: चलिए ये आपको लगाना है।

0: मोदी सरकार क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और विकसित भारत विजन 2047 को साकार करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्राथमिकता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2014 से पहले राज्य में केवल एक बड़ी जल विद्युत परियोजना रंगा नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स था। पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दिए जाने से 110 मेगावाट की पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 600 मेगावाट की कामले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है और 2000 मेगावाट क्षमता के सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की 8 इकाइयों में से 250 मेगावाट की 2 इकाइयां कमीशन हो चुकी है। मेगावाट की दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कार्य त्वरित गति से चल रहा है और इस परियोजना के पूरा होने पर हाइड्रो पावर जनरेशन में देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कलाई 1 और 2, तातो और हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबानसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।
1: हमारी और हमारी टीम ने इस कठिन परिस्थितियों में और इस भूगर्भ कठिनाइयों के में रहके इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरह से काम किया और ये प्रोजेक्ट का ब्रेक थ्रू दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर नल के जरिए पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के बीच बेहतर तालमेल से अरुणाचल प्रदेश अगस्त 2024 में हर घर नल जल के लक्ष्य को पूरा करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना।

0: पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान से अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सोच में बदलाव आया और अब नागरिकों में आसपास के वातावरण को स्वास्थ्य रखने की आदत का विकास हुआ है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का जीवंत प्रमाण है।
1: आजकल बहुत अच्छा है, पहले बहुत गंदा था, थोड़ा आईएमसी ऑफिस आके आके बोल दिया बहुत अच्छा है।
2: अभी तो पहले से बहुत ठीक है, यहाँ में पहले बहुत कचरा होता था ना, तो गन मारता था हमको, यहाँ में पार्किंग करने से ड्राइवर लोग जितना भी है यहाँ में पार्किंग करने से भी बहुत गन मारता था। अभी थोड़ा साफ सुथरा है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी
3: जगह जगह थोड़ा बहुत अच्छा साफ सुथरा नजर आ रहा है पहले से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की। भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए देश के 100 शहरों और नगरीय क्षेत्रों का चयन किया गया, जिसमें राजधानी ईटानगर और पासीघाट शामिल है। स्मार्ट सिटीज मिशन के कैपिटल ईटानगर का कायाकल्प हुआ है। इसके तहत सिटी के ब्यूटिफिकेशन के साथ ही नागरिक सेवाओं का विकास हुआ है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना से पासीघाट टाउन की सड़कों और सभी वर्ग के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजधानी ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में एकेडमी में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, जूडो, कराटे, वेटलिफ्टिंग, वुशु आदि कई खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सर्कल एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है और अब पापुम्पारे जिले के गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पूर्वोत्तर में फुटबॉल सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है, यह एक गहरा जुनून है और तवांग में स्थापित 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई में बना तवांग का हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम अपनी तरह का अनूठा है। अरुणाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखकर वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइट स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है। इस केंद्र में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सहित एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। तवांग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हर साल आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में देश विदेश के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप पिछले 12 वर्षों में विकसित अरुणाचल की नींव रखी है और अरुणाचल में विकास का जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसका लाभ दशकों तक भावी पीढ़ियों को

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले।
0: श्रोता, बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम प्रसारण सभा में स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का। अभी आप सुन रहे थे आदि डायरेक्ट न्यूज। चलिए दोस्तों, आगे आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर। नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। हमेशा की तरह मजेदार गीत जरूर है आपके लिए जिन्हें आप जरूर पसंद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनका हाथ 2.5 किलो का है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सनी देओल के बारे में। 19 अक्टूबर 1957 को जन्मे सनी देओल का वास्तविक नाम अजय सिंह देओल है। घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता था और फिल्मों में इसी नाम से आने की उन्होंने ठानी। धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी का एक भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजिता हैं। दोनों बहनें अमेरिका में रहती हैं। सनी की दो हाफ सिस्टर्स हैं ईशा और आहाना देओल। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बेटे यानी कि बड़े बेटे सनी को फिल्म बेताब जो कि रिलीज हुई 1983 में, इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में सनी देओल को लॉन्च किया। और जानते हैं श्रोता कि इस फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया, फिल्म सुपरहिट रही और सनी के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। फिल्मों में लॉन्च करने से पहले धर्मेंद्र ने सनी को बर्मिंघम में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र की जीन

वे अपने पिता और माँ के बिना रह ही नहीं सकते। सनी देओल फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि इन पार्टियों में सारे लोग बनावटी रहते हैं और झूठ बोलते हैं। शराब और सिगरेट से सनी दूर रहते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलन को सनी देओल बहुत पसंद करते हैं और रैम्बो सीरीज की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। सिल्वेस्टर स्टेलन से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी। और इसी तरह की बहुत सारी बातें अभी बाकी है श्रोता। फिलहाल चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का बेताब फिल्म से।

दोस्तों, अभी आपने आनंद लिया इस गीत का बेताब फिल्म से, और हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान सनी देओल के बारे में। जी हाँ, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का। श्रोता, सनी ने उस दौर में अपनी बॉडी बनाई जब आमतौर पर हीरो पतले दुबले हुआ करते थे। उनका मजबूत शरीर देख ज्यादातर उन्हें एक्शन रोल निभाने को ही मिला और उन्हें भारत का आर्नोल्ड भी कहा जाता था। सनी को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अर्जुन, डकैत, यतीम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय काफी सराहा गया। पाक की दुनिया, जो कि रिलीज हुई 1988 को, इस फिल्म से उन्हें दोबारा सफलता मिली और फिर उन्होंने त्रिदेव, वर्दी जैसी कुछ हिट फिल्में दी। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूरी अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। सनी को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्मेंद्र बेहद खुश हुए। धर्मेंद्र यह पुरस्कार जीतने में कभी कामयाब नहीं रहे। घायल के जरिए सनी ने ही निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर दिया था। फिल्म के स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाजा हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले बनाया। दर 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म में काम करना सनी के लिए खराब अनुभव रहा। सनी को लगा कि सेट पर उनकी उपेक्षा की जा रही है, चीजें उनके मन माफिक नहीं हो रही है। एक बार तो वे इतने गुस्से में आ गए कि जीन्स के जेब में हाथ डालकर उन्होंने पैंट को नीचे तक फाड़ दिया। राजकुमार संतोषी और सनी ने तीन फिल्में की, घायल, घातक और दामिनी। ये तीनों सनी के करियर की बेहतरीन फिल्में मानी जाती है। बाद में दोनों में विवाद हो गया और राहें अलग हो गई। इस विवाद के कारण कई अच्छी फिल्मों से दर्शक वंचित रह गए। आइए दोस्तों, इसी तरह की बातें और भी सारी बहुत होती रहेंगी इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, चालबाज फिल्म से।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। दोस्तों, सनी देओल और आमिर खान की 3 बार फिल्में आमने सामने हुई, दिल और घायल, घातक और राजा हिंदुस्तानी, गदर और लगान। तीनों बार दोनों ही फिल्में सफल रही। 2001 में प्रदर्शित गदर एक प्रेम कथा सनी देओल की करियर की सबसे बड़ी हिट रही। कहा जाता है कि पिछले 15 वर्षों में इस फिल्म के सर्वाधिक टिकट बिके। गदर एक प्रेम कथा को प्रदर्शन के पूर्व ठंडी फिल्म माना जा रहा था और लगान को हॉट। रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगान की तुलना में गदर ने कई गुना ज्यादा व्यवसाय किया। गदर में सनी का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन बेहद पसंद किया गया और माना गया जाता है कि इस दृश्य को केवल सनी देओल ही विश्वसनीय बना सकते थे। गदर के बाद कई पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने कहा कि भारत में एकमात्र मर्द हीरो सनी देओल ही है। सनी की फिल्मों की रिपीट वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। एक ही शहर में उनकी फिल्म कई बार लगाया जाता था और हर बार अच्छा व्यवसाय होता था उस फिल्म का। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं गदर फिल्म के ही इस गीत का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में इस गीत को आप सुन रहे थे गदर फिल्म से। और इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे कुछ और मजेदार गीत एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए आगे लिए चलते हैं आपको हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। श्रोता, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज में।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के

0: अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700-5760-115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मोमोज टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

श्रोता राम लखन फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। ये भी बता दूं आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: का है पहली बार साजन की आंखों में प्यार जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को आप सुनाना चाहते हैं इस गीत को?
1: पहले आपके लिए
0: धन्यवाद।
1: चक्रवर्ती सिंधु दास विजय सिंह लोकेरा
0: जी, इन सभी को आप सुनाना चाहते हैं। देवोजीत दास दा को भी आप सुनाना चाहते हैं जी। तो सुतापा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो हम आपको साजन फिल्म का गीत हम आपको और आपके सभी

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मेरे दोस्त,
0: जी
1: कैसे हो आप?
0: जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: अरे बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो। आखिरकार मेरा फोन आपने उठा ही लिया,
0: जी जी
1: तो
0: आप कॉल करेंगे
1: तो
0: और हम ना
1: दिल
0: उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: गार्डन गार्डन हो रहा है।
0: जी जी जी जी हमारा भी दिल बहुत ही खुश हो रहा है।
1: जी जी
0: जी
1: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट के श्री भूमि, आसाम से तालुका थे।
0: आसाम से हमारे दोस्त अनूप दा।
1: जी और मेरे दोस्त, आपके वहाँ के जो वातावरण जो है, क्लाइमेटिक जो ये सिचुएशन कैसे है?
0: जी अनुपदा हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है जी, बहुत ही प्यारा मौसम
1: जैसे
0: है।
1: आप जैसे हमारे यहाँ पे तो हो रहा है बारिश।
0: अच्छा आपके वहाँ पे भी हो रहा है ना?
1: अभी बारिश थोड़ा थम सा गया, लेकिन
0: अच्छा
1: बारिश का संभावना है।
0: ओके जी, हमारे यहाँ तो लगातार हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है।
1: जी जी जी जी और एक बात कहूँ मेरे दोस्त।
0: जी जरूर।
1: सास और विश्वास दोनों अलग अलग नाम है ना, पर काम एक ही करता है। सांस जाए तो शरीर खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म, है
0: विश्वास
1: ना?
0: जाए तो रिश्ता खत्म। जी बहुत ही अच्छी बात कही अनुपदा आपने।
1: जी
0: जी जी यही है
1: और
0: जीवन की
1: आज
0: सच्चाई।
1: इसी प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी जरूर जरूर।
1: फिल्म का नाम है यादों की कसम, और गाने का बोले से तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीनी मिट्टी जाने कहाँ से लाया, ऐसे करके गाने।
0: वाह वाह वाह वाह। जी जी बहुत ही बढ़िया
1: गीत, सुंदर गाने हैं।
0: हाँ
1: मेरे
0: जी
1: दोस्त
0: जी जी
1: हमारे बहुत अच्छे कलाकार है, सुरेश वाजेकर जी।
0: जी जी
1: बहुत अच्छी से गाए हैं,
0: ओके
1: और उन्हीं के गाने हैं वो।
0: जी
1: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता
0: जी
1: हूँ।
0: जी जरूर जरूर। हाँ
1: पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, श्रीकांत जोशी जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, अमर सिंह साहू जी है।

0: अपन आचार्य जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, सिंधु दास जी है और ओम प्रकाश नेमा जी है श्रीकांत से, और विजय सिंह लखेरा जी, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं ईटानगर के इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, और मेरे दोस्त बके बागरा और हमारे बहुत अच्छे सिस्टर है जिसका नाम है
1: नूरी मैम
0: के लिए।
1: ओके।
0: तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ।
1: जी जी जी।
0: बहरहाल आप अच्छे रहिए, श्रोता भाई बहन अच्छे रहे। थैंक यू।
1: ओके अनुपदा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय भागरा साहब सादर नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से, और बहुत बहुत स्वागत है।
1: जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री मथुरा उत्तर प्रदेश से आकाशवाणी ईटानगर से वार्तालाप कर रहा हूँ आदरणीय वागरा साहब से। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना है। आप कहिए आप कैसे और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करने का जब भी अवसर प्राप्त होता है मैं इसे खोना नहीं चाहता, और आपसे वार्तालाप करके बेहद खुशी प्रसन्नता की अनुभूत करता हूँ। और मानवर बताना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त लू की चपेट में पूरा ब्रज मंडल है, यानी कि लू का प्रभाव ज्यादा है। गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, चिलचिलाई हुई धूप रहती है, और ऐसे में हम केवल और केवल रेडियो के साथ में जुड़े रहते हैं घर के अंदर रहते हुए।
0: ओके जी, बहुत ही अच्छी बात है, घर के अंदर रहिए। और शारदा प्रसाद जी, आप रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? सिर्फ गाने के प्रोग्राम या फिर कोई अन्य प्रोग्राम भी आप सुनते हैं?
1: जी मैं क्या है कि हेलो फरमाइश सबसे ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, फिल्म संगीत पसंद करता हूँ, और जो लोकगीत आते हैं विभिन्न राज्यों के, राजस्थानी लोकगीत है, अवधी लोकगीत है, और साथ में जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है इन्हें भी मैं सुनना पसंद करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और हमारा अरुणाचल प्रदेश का कभी आपने सुना?
1: जी अरुणाचल प्रदेश का जो गाने हैं ना वो लोकगीत हमें बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भिन्न है।
0: जी,
1: और
0: ये बात तो सही
1: तारीफ है कि क्या कहें, आपको तो असमिया भी आती है, बंगाली भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है वो भी आपको अच्छी तरह, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी है आप,
0: बहुत
1: क्या
0: बहुत
1: कहने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जाति है और 100 से भी अधिक जनजातियां हैं, और इन सब की भाषा बोली बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से।
1: जी,
0: इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ के लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से भाईचारे के साथ रहा करते हैं।
1: जी, यही तो हमारे भारतवर्ष की विशेषता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एकता है, अनेक वेशभूषा भोजन सब विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में सब एक जैसे रहते हैं, सबकी भावनाएं एक है, सबकी कल्पनाएं एक है, और सबके विचार एक रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कभी इस अगर मौका लगे तो जरूर सुनिएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश का लोकगीत, और आधुनिक गीत भी काफी सारे हैं यहाँ के।
1: जी,
0: अवश्य। ओके, तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: आज मैं अपने परम आदरणीय वागरा साहब और अपने बीच जो हमारी मित्रता है उसी के ऊपर एक गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी,
1: फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: संग आए, दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बागरा साहब को
1: मेरी
0: सुना फिर
1: दोस्ती,
0: जाता हूँ।
1: मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जी जी हमारा ये जो दोस्ताना है वो हमेशा बना रहे।
0: जी जी
1: जी
0: ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में आपस में यूं ही प्रेम नेश में बना रहे और हम
1: बिल्कुल
0: आपसे वार्तालाप करते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे इस गीत को?
0: जी इसमें मैं समर्पित करता हूँ सर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, बाबा प्रेमदास जी हैं और साथ में पुरुषोत्तम जी, पुष्करनाथ जी, राकेश कुमार जी, अर्जुन प्रधान, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को बागरा साहब के साथ समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना दोस्ती फिल्म से।
0: जी हृदय धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडी को श्रोता संग बस ट्रेन बंडा वैली से लक्ष्मण को चाय वाले को चाय पी लो सर।
0: जी लक्ष्मण प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चाय ऑफर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहिए कैसे हैं आप?
1: आज अच्छे हैं, तो तपा लग गए तो गर्मी तो आज से बहुत होने लगी है।
0: ओहो जी जी जी जी, गर्मी का प्रकोप क्या करें, अभी इसे तो सहना ही है जी। तो गर्मी में चाय पिए तो शायद थोड़ी ठंडी आ जाए।
1: क्योंकि घर काम अच्छी चलती है।
0: ओके ओके जी, हाँ जी।
1: दोपहर थोड़ी डाउन हो जाती है।
0: ओके ओके जी जी, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं ना, इसीलिए शायद लोगों का आना कम होता होगा जी। ओके,
1: तो एक ही उपाय है, अब तो देखे जैसे गर्मी तबाह लग गए हैं तो आम का पना जरूर पी। आम का पने से क्या होगा, दिन भर ठंडक रहेगी और दही मठा ज्यादा खाएं तो उससे बीमार भी नहीं होंगे।
0: ओके जी जी। और लक्ष्मण जी, ये गर्मी कौन से महीने तक रहता है आपके वहाँ?
1: ये अभी 15 दिन तो गर्मी कम से कम रहेगी, 15 महीना रहेगी अभी।
0: अच्छा, कौन से महीने से थोड़ी ठंडी शुरू होती है?
1: ये अपने जून लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हो जाएगी थोड़ी ठंडक।
0: अच्छा,
1: पानी मानी गिर जाएंगे दो चार लगातार तो ठंडक आ जाती।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आशा करते हैं जल्दी ठंडी आ जाए ताकि सबको राहत मिले गर्मी से। और कहिए कौन सा फिल्म का गीत आज सुनाए आपको?
1: आज सुना दी अनाड़ी पिक्चर का है।
0: ओके, और गाने के बोल?
1: इसके बोल रहेंगे फूलों से चेहरा तेरा कुदरत की हैरान है।
0: ओके जी जी जी,
1: हाँ, और हमारे दोस्त भी सुनना चाहते हैं।
0: हाँ जी जरूर जरूर।
1: हाँ, गजराज लोधी है, मांगी लाल चंदेल है, बसंती लाल सूर्यवंशी, बसंत कटारे हैं और अमित तिवारी हैं, जी सब दोस्त हैं जो सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी दोस्तों के साथ आप सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का गीत, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ठीक है सर, नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: तुमने चाहा ही नहीं था वरना हालात बदल सकते थे। उसकी आँख के आंसू मेरी आँख से निकल सकते थे। वो तो ठहरे रहे थे पानी और झील की तरह। अगर दरिया बन के बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
0: क्या बात है, क्या बात है। अगर दरिया बनकर निकले तो बहुत दूर निकल सकते थे। क्या बात कही है। जी जी। और इसी के साथ हो जाए अपना परिचय।
1: साहब मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, चाकू वाले रामपुर से।
0: ओके अमरजीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: मैं सर काफी अच्छा हूँ। जानना चाहता हूँ आप लोग कैसे हैं, आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं सर?
0: जी हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, हम सभी अच्छे हैं। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: सर हमारे रामपुर क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ पे सर काफी गर्मी पड़ रही है, अधिक से अधिक गर्मी है सर। करीब रहता है टेम्परेचर रहता है 40-39 डिग्री रहता है सर।
0: ओहो जी जी, ये तो बहुत ही भयानक गर्मी है जी। हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही बढ़िया है।
1: बहुत अच्छी बात है सर, हमारे यहाँ तो करीब बारिश अभी नहीं बरसती है। पिछले दिनों 20 दिन पहले बारिश गिरी थी।
0: अच्छा
1: और उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश पड़ जाए, कुछ गर्मी से राहत मिल जाएगी
0: जी
1: सर।
0: जी जी अमरजीत जी, आपने पहली बार कॉल किया या फिर आपने पहले भी कॉल किया था हमें?
1: सर मैंने जो आपसे इस प्रोग्राम में पहली बार बातचीत हो रही है और पहली
0: अच्छा
1: बार बहुत प्रयास करने के बाद कॉल शामिल हो रही है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार कॉल लगा सर।
0: ओके अमरजीत जी, तो पहले तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सर।
0: हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: जी। और अब उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहेंगे आगे भी।
1: जी बिल्कुल सर, आकाशवाणी को मैं बराबर सुनता हूँ और आपके केंद्र में मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है सर। आपके केंद्र से जितने प्रोग्राम रिले होते हैं
0: जी
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश रहता है, जिसमें के सभी श्रोताओं की चुनिंदा गीतों की फरमाइश रहती है और जो आप लोग पूरे करते हैं सर।
0: जी जी जी पूरे देश से कॉल आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सभी से बात करते हुए। तो अमरजीत
1: जी
0: जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए हम?
1: सर मूवी का नाम रहेगा साथी और इसमें जो गीत मैंने चुना है इस मूवी से, गीत के बोले आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें, तू मेरे दिल में रहे मैं तेरे दिल में रहूं। सर दो लाइन में और कहना
0: जी
1: चाहूंगा
0: जरूर जरूर।
1: कि मत सताओ हमको, हम सताए हुए हैं, अकेला रहने का गम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर ना खेलो हमसे, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं।
0: क्या बात है अमरजीत जी, लगता है आपको शेरो शायरी के काफी शौकीन हैं आप।
1: जी, सर
0: ओके
1: मैं कहीं भी आकाशवाणी पर जब मैं फोन कॉल करता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं शेर शायरी से ही शुरुआत करता हूँ और जितने भी श्रोता लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं साथी
0: जी
1: तो मेरी आवाज पहचान गए होंगे, क्योंकि मैं भी जब सभी श्रोताओं की आवाज सुनता हूँ तो खाली हेलो करने के बाद ही उनकी आवाज पहचान जाता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और जो सर हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है जिसमें के लोकेंद्र वर्मा हैं,
0: जी
1: उनको भी इस गीत में शामिल करना चाहूंगा और जितने भी साथी लोग सुन रहे हैं सभी को, और साथ में आप भी रहें।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर
0: ओ भाई कौन मुंडा, ভাল লাগিছে দে আপনার কল রিসিভ করি। আর আপনি কেনেকুয়া?
1: মই ভালে আছে, আপনার সব ইটানগর সকল ভালে আছে না?
0: হয় হয়, আমি ইটানগর সব কিছু বহুত ভাল। আপনার তাত কেনেকুয়া আছে এটা ওয়েদার? বরখন দিছে জানো?
1: বরখন তো আজি দিয়া নাই, আজি তো দে আছে।
0: আচ্ছা আচ্ছা,
1: লকেন লকে বরখন আছে বড়।
0: ওকে, আমার ইয়াতো বরখন দি আছে।
1: হয় এতিয়া আমি হিন্দিতে পাতো
0: নেকি? ওকে, হিন্দি হিন্দি তাহলে। তো হয় হয় হয় হয় হসা কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, तो अपना नाम और परिचय बताइए।
1: मेरा नाम है भाकुर मुंडा, मैं चौराहे डिस्ट्रिक्ट सरारी असम से बोल रहा हूँ।
0: ओके जी।
1: आज मेरा पसंद का गाना है, फिल्म का नाम है जमाना दीवाना, 1995 में रिलीज हुआ फिल्म है।
0: ओके।
1: इसमें गाना है, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपा, क्या है तेरा फैसला। गाना है, वो गाना का टाइटल है और अब्बा।
0: ओके जी जी जी, हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
1: गाना सुनना है और दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है।
0: जरूर जरूर जी जी।
1: अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगिंदर रोंगटी, रमेश पात्र, रोनू पात्र, लाखी और अंजलि बसुमतारी, और जितने भी अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर, सभी के लिए डेडिकेट।
0: सभी को आप डेडिकेट करना
1: चाहिए। सर आपके लिए भी रहेगा।
0: ओके जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो भाईकुंड मुंडा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: जी नमस्कार, मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक के चौक गाजियाबाद से बोल रहा था जी।
0: जी मनोहर लाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी आपका भी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हो आप?
1: ठीक है जी, दुकान पे बैठे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा जी, आपकी दुकान है अपनी?
1: हाँ जी दुकान है, यही अपने ऐप के थ्रू हम ईटानगर के प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: प्रोग्राम होते हैं।
0: क्या बात है जी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज की दुकान है आपकी मनोहर लाल जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी तो
1: संगीत से ज्यादा जुड़े रहते हैं हम।
0: अच्छा ओके जी
1: अभी
0: जी।
1: भी मैं जो है सेक्टर 62 नोएडा में हूँ, तो वहाँ जा रहा हूँ मंडी हाउस।
0: अच्छा
1: वहाँ एक हमारा प्रोग्राम है म्यूजिक पर।
0: अच्छा ओके ओके। और किस तरह का प्रोग्राम?
1: ये लाइव बैंड के ऊपर होता है प्रोग्राम यहाँ पे।
0: अच्छा, तो आप भी उस बैंड के मेंबर है या फिर आप जस्ट सुनने जा रहे हैं?
1: जी जी मतलब बुलाते हैं दोस्त, हम चले जाते हैं।
0: अच्छा ओके। अभी मौसम तो गर्मी होगी शायद वहाँ पे?
1: मौसम हाँ गर्म है, गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है इस टाइम।
0: ओके,
1: ध्यान रखना पड़ रहा है।
0: तो ऐसे में भी प्रोग्राम चलता है?
1: हाँ जी प्रोग्राम चलता है, वहाँ तो हरियाली होती है मंडी हाउस में जो है श्रीराम सेंटर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके।
1: बहुत से ऑडिटोरियम है वहाँ पे, तो
0: अच्छा
1: वहाँ ऐसी
0: ओके।
1: बात नहीं हो, म्यूजिक हो तो फिर गर्मी
0: हाँ
1: कम।
0: जी हाँ जी, म्यूजिक के आगे तो गर्मी कुछ चीज ही नहीं
1: अब
0: है।
1: ईटानगर हमारा फोन लगा,
0: जी
1: सारी गर्मी दूर हो गई, ठंडक का महसूस कर रहे हैं।
0: क्या बात है जी जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है वैसे।
1: जी जी हाँ, तो वहीं से ठंडी हवाएं आ रही है लग।
0: जी जी जी। और आप पहली बार हमें कॉल कर रहे हैं मनोहर लाल जी?
1: नहीं बहुत पहले किया था मैंने।
0: अच्छा अच्छा पहले भी आपने किया था, ओके।
1: हाँ जी हमारा ग्रुप है ना हेलो फरमाइश एकता ग्रुप, तो वहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है, फिर हम फोन लगाते हैं, फिर हम प्रोग्राम सुनते
0: अच्छा
1: हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है जी जी। इसी तरह से आगे भी जुड़ते रहिए हमसे
1: जी
0: जी। और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: ये फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते।
0: ओहो जी जी जी। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: यही दोस्त है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, राय भोले जी हैं, और भी बहुत सारे मेंबर हैं हमारे ग्रुप के, सभी के लिए मैं ये गीत
0: सभी को आप डेडिकेट करना। ओके, तो मनोहर लाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: ये बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी इलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र
0: जी
1: ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ सर जी।
0: तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: और आपका ईटानगर परिवार?
0: जी ईटानगर परिवार भी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना है, बारिश हो रही है बाहर। जी
1: अच्छी बात है, हमारी तरफ थोड़ी भेज दो, हमारे इधर कड़ी धूप पड़ रही है।
0: ओके जी, कोशिश करूंगा कि थोड़ी आपके वहाँ पे भेज दूं बारिश, ताकि आप सभी को धूप से राहत मिले।
1: जी बिल्कुल।
0: तो कहिए तुकाराम जी, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: फिल्म का नाम है शागिर्द।
0: ओके।
1: और गीत के बोले दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे।
0: वाह वाह वाह, दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बहुत ही बढ़िया गाना है। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेश वर्मा जी, गंगाधर सावनकर जी, सुनील दास जी, दिलीप पहुजा जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, सीएसआई राज शेळके जी, कांताबाव रामगडे जी, विठ्ठल पवार जी, सतीश गाडगे जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटील तारुकर जी, रमेश जाधव जी और उदय काळे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: तो इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं सागर फिल्म के इस गीत को। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर
1: जी। नमस्कार, कैसे हैं सर
0: जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: आज तो पहली दफा जुड़ा हूँ, पहली दफा कॉल लग गई।
0: अच्छा
1: बहुत,
0: ओके।
1: मगर बहुत बहुत दिनों में कॉल लग गई। आप बहुत देर से कॉल आ रहे हैं, आधे घंटे से कॉल आ रहे थे आपकी।
0: अच्छा अच्छा जी, काफी लोग कॉल कर रहे थे ना, इसीलिए बिजी था
1: जी।
0: जी।
1: मैं रेहान बोल रहा हूँ, जिला रामपुर ऐसा मिलता था से।
0: ओके रेहान जी, सबसे पहले तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं
1: जी जी जी जी
0: जी
1: नए नए सदा को मौका मिलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहिए हमसे रेहान जी।
1: हाँ जरूर जुड़ेंगे, और
0: जी
1: वैसे भी ग्रुप पे मस्ती ग्रुप पे होंगे आपके पास, और रेडियो पे सुनेंगे आपकी।
0: ओके जी जी जी
1: और
0: जी
1: बताइए मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है।
1: यहाँ तो बारिश हो गया, तो कई दिन से गर्मी इतनी लग रही है, धूप में धूप तेज हो रही है।
0: ओके
1: 11 बजे 11-12 बजे तो 39 और
0: बाप
1: इकतालीस
0: रे
1: डिग्री इतनी होती है बस।
0: जी, बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है वहाँ पे
1: जी जी जी जी जी
0: जी। तो रेहान जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। मैं और गर्मी में ना निकले बाहर ज्यादा, अगर निकले भी 11 बजे से 4 बजे तक घर में से ना निकले। अगर निकले तो अर्जेंट तो छतरी लेके जाएं, छाता
0: जी बहुत ही अच्छी बात
1: लेके
0: की।
1: जाएं,
0: जी, छाता लेकर निकले अगर जरूरी हो तो, बहुत ही अच्छी
1: और
0: बात
1: ज्यादा
0: कही।
1: ठंडा पानी यूज करें, और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक ज्यादा यूज करें, और नींबू
0: जी
1: का पानी ज्यादा यूज करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वे आपके बताई हुई इन बातों को जरूर अपनाएंगे और अपने आप को गर्मी से बचाएंगे।
1: जी जी जी जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी अच्छा अच्छा
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा, बहुत अच्छा आया आज। आज बहुत खुशी हो रही है।
0: जी, हमें भी बहुत ही खुशी हो रही है नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया है।
0: ओके
1: आप ऐसे आते जाएगा और जरूर कॉल जरूर लगाएंगे, और वैसे
0: ओके
1: भी चिट्टी मस्ती ग्रुप पे फीडबैक देते रहेंगे आपको।
0: ओके जी, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी
0: तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए रेहान जी?
1: आज तो वैसे भी ईद के दौर आ रहा है, 28 मई की ईद है, तो ईद के मौके पर गाना सुनना है। हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का नाम,
0: ओके
1: गाने का बोल है, चांद नजर आ गया अल्लाह अल्लाह छा गया, रोजा रखने वालों की ईद।
0: ओके, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे आप इस गीत को?
1: वैसे पापा हैं, अम्मी हैं, भतीजा भतीजी, पूरा परिवार सुनना चाहते हैं, अमरजीत भाई सुनना चाहते हैं।
0: ओके तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेहम भाई। सुनते हैं आपके पसंद का गाना हीरो
1: ठीक
0: हिंदुस्तानी
1: है।
0: फिल्म।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व

0: अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700-5760-115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्वेता, अभी आप आइए, इस बार आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की ओर। आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

राहत फतेह अली खान के गाए हुए अनजाना अनजानी फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीतों का। आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूरे मिश्रे गीत का।

0: शुद्ध पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए अप्रैल फूल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: कसूर जिसने दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया, तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: 看。
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी के यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस

0: एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
1: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलेबोरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें, और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने 4-5 मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक, जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम ICMR के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
0: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ ICAR की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं, तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावाबीन की 1-1 किस्म है।
0: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
1: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये मान लिए आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको ICAR में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीड सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी NFSM में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे KVK जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय है, ICAR के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
0: बिल्कुल, तो ICMR और ICAR की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
1: धन्यवाद।
0: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल ICMR में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर प्रियंका बंसल। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाए जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें ICAR जो है वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा है, और उन्ही चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे, और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है
0: जी। तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
2: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
0: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
2: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है, कि फसल तो बन गई मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल News on AIR Official और हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि भी इस समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मिस्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा देशों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ताओं मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner, along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Shivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said, infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
4: Dr. Jayashankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. The government has revised the minimum assured procurement price or MAP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. The revised MAP has been done on the request of the state governments, which has come into effect from today. In this regard, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi today chaired a meeting with officials from Department of Consumer Affairs, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, and National Cooperative Consumers Federation of India in New Delhi. In a social media post, Mr. Joshi said that the meeting was held to facilitate effective procurement of quality onion stocks and ensure better returns to farmers. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defense, trade, technology, and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister also received Minister for Foreign Affairs of Japan, Toshimitsu Motegi. He reaffirmed the vital role of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership in advancing peace, stability and prosperity across the Indo-Pacific and beyond. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 13 for no loss in 2 overs when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. The winner of this match will advance directly to the final. And that is the end of this news bulletin.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। भारत ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अनुचित उल्लेखों को सख्ती से खारिज किया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू की। सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए अहम समझौते पर हस्ताक्षर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को भी इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को उसकी परियोजनाओं का कड़ा विरोध करता है जो भारत के संप्रभु क्षेत्र में आती है। श्री जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में चीन और पाकिस्तान को भारत का रुख कई बार स्पष्ट बताया जा चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के बीच तथा कथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग का भी उल्लेख किया। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के तथा कथित सीमा समझौते को कभी नहीं मान्यता दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
5: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
5: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के सदस्य देशों को निवेश और आर्थिक नीतियों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
5: बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। श्री के नागराज नायडू ने कहा कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: Counter-terrorism is a significant pillar of
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है. विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की. संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया.
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स.
5: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई. बातचीत में रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे. प्रधानमंत्री ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए. ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ. विदेश मंत्री ने कहा कि ये समझौता लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा, दोनों देशों को वित्त पोषण में सहयोग करने में मदद करेगा और महत्वपूर्ण खनिजों तथा दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक होगा. ईरान ने अमेरिका के दक्षिणी ईरान में हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे विश्वासघात और अविश्वसनीयता का संकेत बताया है, जबकि पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समझौते की दिशा में बातचीत जारी है. हालांकि अमेरिका ने इसे अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा करार दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि अमेरिका को इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. और अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
8: पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है. लेबनान में इसराइली सेना ने बेका घाटी में हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है. हालांकि 45 दिनों का युद्ध विराम अभी भी तकनीकी रूप से प्रभावी है. इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ कड़े प्रहार करने की बात कही है. वहीं हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में जवाबी हमले किए हैं. गाजा में अलग अलग इसराइली हवाई हमलों में 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इस बीच कतर में जारी बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता धीरे धीरे आकार लेने लगा है. हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे प्रमुख मुद्दों पर मतभेद अभी भी बना हुआ है. दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
5: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे. डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी. भारतीय पहलवानों ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते. वियतनाम के दानांग में आयोजित प्रतियोगिता में मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक जीता. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. भारत ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अनुचित उल्लेखों को सख्ती से खारिज किया. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू की. भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए अहम समझौते पर हस्ताक्षर. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते. इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.